आला कहने श्रोताओं, मैं या तो हम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे करने। वहाँ सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

जिन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनदे न कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज

हाँ मोला कहते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते ना कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए जीजीआई के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। जीजीआई आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, खर्च ऐसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे

0: भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे।

0: राहुल, ये प्यार कैसे होता है?
1: प्यार, प्यार तो बस हो जाता है, कैसे?

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं।

0: अपना कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं Apex Plus Point Authorized Admission Center नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं।
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे।

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और इस कार्यक्रम में आज के इन दो घंटों के सफर में रहने वाली हूँ मैं आपके साथ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो आप सभी का स्वागत है 6 जून में, और साथ ही साथ आज है वीकेंड।

और कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ आज के विचार से। कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो हालात के सामने हार नहीं मानते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस लाइन को समझाने की जरूरत है आप सभी को। गाहे बगाहे हम किसी न किसी तरीके से ये पंक्तियां आपके सामने रखते ही रहते हैं, आज के विचार के रूप में या फिर किसी और रूप में। और इतने समझदार तो आप लोग भी हैं ही कि इन सभी बातों को समझ ही सकते हैं।

0: धर्मशाला के जो पहाड़ हैं, धौलाधार की पहाड़ियाँ, उन्होंने इस नौ तपा को बिल्कुल ही नदारद कर दिया, बिल्कुल अपने आसपास कहीं फटकने भी नहीं दिया। और आज तक, आज सुबह तक का जो मौसम है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही हसीन बना हुआ है। अब ये तो नहीं कहूँगी कि नौतपा की बेइज्जती हो गई, क्योंकि बाकी और पूरे देश में भी तो गर्मी प्रचंड रूप में है ही, लेकिन हम जो धर्मशाला में रहते हैं ना, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। क्यों, क्या कहना है आपका? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, फिर करूंगी मौसम की बात।
1: अपडेट्स के लिए अल्ट्रा

जी श्रोताओं, इन हसीन वादियों से दो चार नज़ारे चुरा लें तो चलें। और अगर हम आज के मौसम के बारे में बात करें तो इस समय 31 डिग्री सेल्सियस हमें दिखाया जा रहा है बाहर का तापमान। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

और हवा में जो नमी है वो है 60%। दोस्तों आपको पता ही है कि मौसम के बारे में जानकारी पहले से ही आ रही थी कि 6 मई तक मौसम खराब ही रहने वाला है। इस समय जब हम आसमान की तरफ देख रहे हैं तो धूप खिली हुई है।

मौसम से इतर अगर मैं बात करूं तो कल रात को कांगड़ा में भूकंप के जोरदार झटके आए हैं। लोग घरों से बाहर निकल गए। पालमपुर अस्पताल की छत से गिरा है पत्थर। मरीज वहां पर शिफ्ट कर दिए गए हैं।

किस किसने महसूस किए वो झटके रात के, जो सो गए होंगे उन्हें तो नहीं पता लगा होगा, लेकिन घर वालों ने जगा तो दिया ही होगा। भाई मैं आपको सच बताऊं कि मैं क्या कर रही थी उस वक्त, मैं आज की कार्यक्रम में जो आपको मैंने कल पर्यावरण दिवस पर हमने रेडियो रिपोर्ट बनाई है ना, रेडियो रिपोर्ट नहीं बनाई, पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसकी रेडियो रिपोर्ट इन शॉर्ट तैयार कर रही थी आप लोगों को सुनवाने के लिए, जो कि आप कार्यक्रम में आगे सुनने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा, आज 11 बजे तक बहुत रोमांच होने वाला है कार्यक्रम में। और अब चलती हैं मौसम की तरफ, तो आज सिद्धवाड़ी में बारिश की संभावना है, सिद्धवाड़ी नहीं पूरे धर्मशाला में है, और कहां कहां पर होगी बारिश ये तो अब आप देखिएगा जैसे जैसे मौसम मतलब दिन आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपको पता चलता ही जाएगा। आज का दिन का अधिकतम तापमान ये तो कह रहे हैं कि 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, लेकिन हमने अभी अभी आपको बताया 31 डिग्री सेल्सियस अभी दिखा रहा था हमें गूगल बाबा, तो भैया कोई यकीन मत किया करें आप इन गूगल शुगल पर, थोड़ा सा अपना जो दिमाग है ना ये इसको भी इस्तेमाल कर लिया करें। हाँ अगर हम दिन भर की बात करें तो रुक रुक कर बारिश हो सकती है, 55% बारिश की संभावना है, लगभग 5 मील प्रति घंटा दक्षिण पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, आर्द्रता हमने आपको बता ही दी है 60% थी अब 61% दिखाई जा रही है, पल पल बदलता है मौसम ये भी आपको पता होना चाहिए, और यूवी इंडेक्स जो है वो 8 दिखाया जा रहा है, काफ़ी तेज़ है, दोपहर में धूप से बचने की बात की जा रही है। शाम को 6:30 बजे के बाद मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और बादल कम हो जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन भैया मौसम तो अभी ही बाहर साफ ही है रात की बात करें तो पूरी तरह से साफ और ठंडा रहने की संभावना है। तो यानी कि अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, आप जैसे कि वीकेंड है तो हो सकता है आप कहीं जाएं, और कल संडे का जो प्लान है साथ ही में आपने आज ही बना लिया हो तो अपने साथ में छाता रेनकोट वगैरह जो भी कुछ आप बारिश से बचने के उपाय करते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब एक चुलबुला सा गीत आपको सुनवाते हैं, उस्तादों के उस्ताद फिल्म से ये गीत आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में, और साथ में एक महिला कलाकार भी हैं, शायद मुझे उनका नाम नहीं पता, आप जरूर बताइएगा। और इसी तरह के गीत सुनते रहने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ 11 बजे तक।

0: हमें पता है श्रोताओं कि आपको ये गीत पसंद आ रहा है और इसी गीत से शुरुआत करेंगे। जहाँ पर रुके हैं वहीं से शुरू करेंगे हम 9:30 पर, जब वापस आएंगे आपसे बातचीत करने के लिए। अभी फिलहाल चलते हैं हम प्रादेशिक समाचारों की ओर।
1: शिमला है, अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा कर रही है राज्य सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने का किया आह्वान। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में, लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिवा परियोजना के तहत 586 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर 10 जून से पहले कार्य पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के निकट पोआबो गांव में वन विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। करीब 8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस परियोजना में 2.5 किलोमीटर लंबा प्रकृति पथ विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता, प्रकृति के प्रति रुचि, जैव विविधता संरक्षण व सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईमानदारी, पारदर्शिता व जनभावना की सेवा से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत 16 सड़कों के निर्माण के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती मतदाताओं की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शिता चुनाव का आधार है और इस सूची में अनुपस्थित, डुप्लीकेट, मृत व विदेशी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार भी जताया।
2: शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार है और शुद्ध मतदाता सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरेनर्स, इनका स्थान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी भारत का नागरिक 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो और उस मतदान केंद्र के आसपास रहता हो, उसका नाम अवश्य होना चाहिए।
1: प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों व पेंशनरों से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा संभावित है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने व सृजित करने पर भी बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं को भी स्वीकृति मिल सकती है। प्रदेश में एचपी शिवा परियोजना के पहले चरण में लगभग 3,083 हेक्टेयर क्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया है, जिस पर कार्य जारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में आयोजित इस परियोजना के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि दूसरे चरण के लिए 7 जिलों में करीब 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जाना है, जिसमें से 2,414 हेक्टेयर क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा रहा है और लगभग 586 हेक्टेयर क्षेत्र की कमी पाई गई है। उन्होंने अधिकारियों को 10 जून से पहले 586 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कांगड़ा व चंबा सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात 10 बजे के बाद भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई और इसका केंद्र 32.289 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76.434 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मात्र 5 किलोमीटर की कम गहराई पर स्थित था। हालांकि इस भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि भूकंप के 3 झटकों से लोग सहम गए।
3: चंबा जिला में 2 घंटे के अंतराल के बीच आए भूकंप के 3 झटकों ने जिला वासियों को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि इन झटकों से कहीं भी किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन एक के बाद एक महसूस हुए इन झटकों के बाद लोग सहमे हुए हैं। पहला झटका 10:04 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 5 आंकी गई। उसके पश्चात 11:03 पर दूसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.8 आंकी गई। वहीं तीसरा झटका 11:52 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3 आंकी गई। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल और पंजाब की सरकारों को इस विषय पर बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों राज्यों के नागरिकों का आपसी संपर्क और आवाजाही लगातार बनी रहती है। शिमला जिला में पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जिले की सभी पंचायत समितियों के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जबकि जिला परिषद शिमला के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में होगा। जिला की 13 पंचायत समितियों चौपाल, ननखड़ी, रामपुर, रोहड़ू, ठियोग, जुब्बल, कोटखाई, कुपुबी, बसंतपुर, मशोबरा, ननखड़ी, छोहारा और टूटू में संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों की निगरानी में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। देश सहित प्रदेश भर में जनगणना 2026 का कार्य जारी है। जनगणना को अधिक सटीक व पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। हमारे ऊना जिला संवाददाता ने बताया कि ऊना जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
4: जनगणना 2026 के लिए ऊना जिला प्रशासन द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस माह के आरंभ से 15 तारीख तक जिले के नागरिकों की सुविधा के लिए स्वगणना की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है, जिसके तहत नागरिक sec.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके उपरांत 1 माह के दौरान प्रगणक घर घर जाकर वांछित जानकारी एकत्रित करेंगे। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जिले के सभी नागरिकों को जनगणना के प्रथम चरण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: लाहौल स्पीति जिला के काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 50 युवा भाग ले रहे हैं।
5: स्पीति के मुख्यालय काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप से आए 50 युवा भाग ले रहे हैं। ये युवा स्पीति के काजा खास, काजा हिस्सोमा, हल, शेगो, कीबर, रामा खास, लालुंग, हुरलिंग, ग्यू और लरी गांव में रहकर स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और विकास कार्यों को समझेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमांत भारत से जोड़ते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना है। आकाशवाणी के लिए
1: लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने मुख्यमंत्री से राजकीय महाविद्यालय कुकुमसेरी को बंद ना करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि ये कॉलेज लाहौल घाटी का एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान है और इसके बंद होने से विशेषकर छात्राओं व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कॉलेज को बंद करने संबंधी अधिसूचना को जल्द रद्द करने का आश्वासन दिया है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से खबर दी है, हिम केयर योजना में निजी अस्पतालों का भुगतान रोकने के फैसले पर रोक, कोर्ट ने कहा विजिलेंस जांच का हवाला देकर राशि रोकना आदेश का उल्लंघन। पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के बयान को लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, चिट्टा तस्कर नहीं सुधरे तो मिट्टी में मिला देंगे। दैनिक भास्कर की एक खबर है पंचायत जन प्रतिनिधियों की शपथ व ट्रेनिंग को, पंचायती राज विभाग ने मांगे 13 करोड़, मिले 3 करोड़। पूर्व सीएस की शिकायत पर रेरा के पूर्व चेयरमैन पर एफआईआर, दैनिक जागरण की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा कर रही है राज्य सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने का किया आह्वान। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में, लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिवा परियोजना के तहत 586 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर 10 जून से पहले कार्य पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
0: जी श्रोताओं, तो बज गए हैं 9:30 हो गए हैं, मतलब हमारी स्टूडियो की घड़ी में, और अब फिर से हाजिर हो गए हैं हम करने आप सभी से बातचीत। दोस्तों गुड मॉर्निंग, धर्मशाला कार्यक्रम में बातें होंगी थोड़ी सी पीछे की। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलेंगे, क्योंकि इस पूरे हफ्ते इतना कुछ गुजर गया और मुझे लगता है कि जब तक मेरी बारी आई तो बहुत कुछ तो हो चुका था जिस पर कि मैं बात ही नहीं कर पाई। और आपको पता है ना, मुझे आपसे बातें करना कितना पसंद है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज उन सारी चीज़ों पर बात करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप यूँ ही बने रहेंगे और हमारे साथ इन

जो बाकी के जो समय बचा है उसमें बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम जो है बड़ा अलग थलग सा होने वाला है। तो जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता चला जाएगा आपको पता भी चलता जाएगा कि हमारे पिटारे में क्या क्या लेकर के हम आए हैं। फिलहाल तो अपने पिटारे से निकाल रहे हैं हम वही वाला गीत जो आपको पहले सुनवा रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि आपको प्रादेशिक समाचार भी सुनाने थे।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुन रहे हैं आप उस्तादों के उस्ताद फिल्म का ये गीत। बड़ा ही प्यारा सा चुलबुला सा गीत, दिल लगा के सुनिए।

देखिए श्रोताओं, ये जो गीत है ना, ये भी एकदम फिट बैठ गया है हमारे इस कार्यक्रम से, आज के इस कार्यक्रम से, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ फ्लैशबैक की बात. और देखिए, ये जो संडे है वो तो कल आना है और मंडे परसों आएगा, लेकिन ये जो गीत है ये अभी ही आ गया है.

0: बोलो क्या करूं।
1: जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, अब हमें भी लगता है कि ये चीज़ें अपने ऊपर लागू करनी पड़ेंगी, क्योंकि पूरा हफ्ता तो हम गायब थे और अब आपको संडे और सैटरडे को मिलने के लिए चले आए। तो फिर ऐसा उल्टा पुल्टा तो होगा ही, है ना। तो श्रोताओं, अब हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में जो हलचल, जो गर्मा गर्मी और जो उत्साह का माहौल था, 31 मई को वो एक मुकाम पर पहुंच गया। समझ गए ना आप, चुनावी नतीजे अब हमारे सामने हैं। लोकतंत्र का ये खूबसूरत पर्व संपन्न हुआ, लेकिन राजनीति से इतर अगर हम एक इंसान के तौर पर देखें तो जिंदगी की असली खूबसूरती इसी बात में है कि यहाँ कुछ भी ठहरता नहीं। समय का पहिया घूमता रहता है और जो आज आगे है वो कल पीछे भी हो सकता है, और जो आज पीछे है वो कल आगे बढ़ने का उसे मौका मिल सकता है। तो जीत और हार तो बस एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए ना तो जीत के जश्न में इतना डूबना है कि हम जमीन को भूल जाएं, और ना ही हार से इतना निराश होना है कि हम कल की उम्मीद छोड़ दें। जिंदगी चलती रहती है और हर दिन अपने साथ एक नई सुबह, एक नई शुरुआत लेकर के आती है। और आपको मैं बता दूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई हमारे साथ। मुझे एक कॉल आया किसी एक प्रत्याशी का जो कि चुनाव में हार चुके हैं, और हुआ क्या जानना चाहेंगे, हुआ ये कि उन्होंने कहा कि आप जीतने वालों के पास जाकर के तो उनसे बात तो कर रहे हैं, उनका तो बाइट्स ले रहे हैं, लेकिन आप हमारे पास नहीं आए। भाई हमने भी तो आपको बताना है कि हार करके हमें कैसा फील हो रहा है और आगे के लिए हम क्या क्या करना चाहते हैं, मतलब कि हारने के बावजूद भी जनसेवा करना नहीं छोड़ेंगे। और यकीन जानिए श्रोताओं कि मैं उसकी ये बात आप तक जरूर रखूंगी। तो जल्द ही जाएंगे हम उनसे मिलने के लिए। अभी फिलहाल यहाँ से नाम नहीं बताऊंगी आपको, बस ऑन द स्पॉट ही आपको बताया जाएगा। तो हम कह रहे थे कि जिंदगी चलती रहती है और हर दिन नया दिन अपने साथ एक नई सुबह, नई शुरुआत लेकर आता है। तो चलिए इसी गहरी और खूबसूरत सोच के साथ आज की इस ताज़ा सुबह को सौंपते हैं अब किशोरदा की इस जादुई आवाज़ के नाम। सुनिए और महसूस कीजिए क्या कहा जा रहा है इस गीत में। अगर आप इसे ऐसे सुनेंगे कि ये सैड है तो आपको सैड ही नज़र आएगा, और अगर कुछ इंस्पिरेशनल देने वाला सुनेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी जो है वो कभी हंसाती है कभी रुलाती ही है। तो पिछले कुछ दिनों ऐसा हुआ है, हमारे बीच से एक दिग्गज कलाकारा जो हैं वो हमारा साथ छोड़ गई हैं।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर का निधन हाल ही में 31 मई 2026 को हुआ। उन्होंने 99 वर्ष की आयु में मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते उनका निधन हो गया और महाराष्ट्र सरकार के आदेशानुसार पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तो कहते हैं श्रोताओं कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके सुर हमेशा अमर रहते हैं। सुमन जी के आखिरी दिनों में उनके करीबियों ने बताया कि वो शांत बैठ करके खुद के ही गाने सुना करती थी। आज भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है लेकिन अपनी आवाज़ की खुशबू वो हमेशा के लिए हमारे दिलों में छोड़ गई हैं। आइए उनकी याद में सुनते हैं उनका ये जादुई गीत।

चलो अब बात करते हैं हम 1 जून की विश्व दुग्ध दिवस हमने मनाया और साथ ही वैश्विक माता पिता दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हमने मनाया है 1 जून को. दोनों में एक कनेक्शन है और आप सोच रहे होंगे कि दूध और माता पिता का क्या कनेक्शन. तो सुनिए दोस्तों, ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन में पोषण का काम करती हैं. याद कीजिए जब आप छोटे थे, अपना बचपन याद कीजिए कि सुबह की शुरुआत माँ के हाथ के गर्म दूध के गिलास से होती थी. हम रोते थे, नखरे करते थे, लेकिन माँ पापा पीछे पीछे घूम करके हमें दूध पिलाते थे. और आज भी कई सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं क्योंकि बच्चों को दूध बिल्कुल पसंद नहीं. नाक वो बहुत कोड़ते हैं बच्चे, है ना. लेकिन वो इस तरह से हमारे पीछे पीछे घूमते क्यों थे? क्योंकि उन्हें हमारी सेहत की फिक्र थी. एक तरफ जहाँ दुग्ध विश्व दुग्ध दिवस हमें याद दिलाता है कि दूध हमारे शरीर और हड्डियों की मजबूती के लिए कितना ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ माता पिता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे संस्कार, हमारी मानसिक मजबूती और हमारी ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी हमारे माता पिता ही हैं. दूध हमारी शारीरिक सेहत को संभालता है और माता पिता का साया हमारी जिंदगी को संभालता है. आज का यानी 1 जून का वो दिन उन सभी किसान भाई बहनों को भी सलाम करने का दिन था जो दिन रात मेहनत करके हमारे घरों तक शुद्ध दूध पहुंचाते हैं. और साथ ही दुनिया के हर उस माता पिता को नमन करने का दिन जो खुद भूखे रह करके अपने बच्चों की थाली कभी खाली नहीं होने देते हैं. तो दोस्तों, वो दिन तो गुजर गया है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा वादा हम कर सकते हैं अपने आप से कि आज घर जाएंगे तो माता पिता के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेकर लेंगे. और हाँ, रात को सोने से पहले सेहत के नाम का एक प्याला दूध, गर्म दूध या ठंडा दूध पीना बिल्कुल मत भूलिएगा.

0: आपको याद आया कुछ इस गीत को सुनकर? जी हाँ, 3 तारीख को यानी कि 3 जून को हमने सेलिब्रेट किया बाइसिकल डे। तो किस किस ने की है साइकिल की सवारी, या यूं कहूं कि साइकिल चलाने की हिम्मत किस किस ने दिखाई है?
1: रंगत है मेरे ही दम से तेरे निखार की,
0: क्योंकि देखिए हर कोई तो साइकिल भी नहीं चला पाता, क्योंकि सारा खेल तो बैलेंस करने का होता है और वही एक चीज़ कठिन हो जाती है कई बार। परंतु हमने कहा कठिन हो जाती है, नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं, नामुमकिन जैसी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं।

जी हाँ, वो कैंची चलाना, घुटने छिलाना और पहली बार बिना पकड़े साइकिल चलाने की वो खुशी, वाह क्या दिन थे ना वो। और साइकिल सिर्फ बच्चों का खिलौना नहीं बल्कि हमारी सेहत और इस धरती को बचाने का सबसे जादुई टूल है। श्रोताओं, अभी अभी तो हम विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करके आए हैं और हाँ, आज है विश्व हरित छत दिवस, यानी कि अपनी छत को भी हरा भरा बना दीजिए।

वैसे बात हो रही है साइकिल की, आज के कंक्रीट के जंगलों और महंगी गाड़ियों के दौर में हम साइकिल को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें न पेट्रोल का खर्चा है न डीजल का। महंगाई के इस दौर में ये आपकी जेब को ठंडा रखती है।

रोज सुबह बस 20 मिनट साइकिल चला लीजिए, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल मजबूत रहेगा और वजन भी कंट्रोल में। जी श्रोताओं, कोई धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, हमारी धरती माँ को साफ हवा देने का सबसे आसान तरीका है साइकिल।

तो दोस्तों आज गैरेज में धूल खा रही अपनी पुरानी साइकिल को बाहर निकालिए, उसमें हवा भरवाइए, अगर वो खराब है टूटी फूटी है तो ठीक करवाइए, या फिर एक नई ले आइए, तो शाम को साइकिल का एक चक्कर जरूर मारिएगा।

0: गाड़ियों की रफ्तार में कहीं बचपन के उस सुकून को मत खोने दीजिए। पैडल मारते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: यहाँ प्यार कहाँ, सब मिलते हैं अपने ढब से।
2: और किस ढब से?
1: छोटों से बड़े मिलते हैं गले मतलब से।
2: हाँ, आज कब से?

तो पिछले गीत में आपने सुना माइकल है तो साइकिल है भाई ये तो एक रिदम बनाने के लिए बना दिया गया गीत, लेकिन आपको साइकिल की महत्ता समझाने के लिए, और ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, जी हाँ, साइकिल पे जब सवार निकलते हैं ना, टोलियां निकलती हैं तो आगे पीछे होती ही रहती हैं। तो गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। एक बात और बता देती हूँ आपको, वर्ल्ड बाइसिकल डे और संडे ऑन साइकिल रैली मई जून 2026 में हुई है, कहां से कहां तक ये अभी बात बताते हैं आपको।

0: तो हम अब आप सोचेंगे कि 2 जून की बात नहीं की, तो 2 जून को हमारे देश में तेलंगाना राज्य बनाया गया था, मतलब उसकी स्थापना हुई थी। और साथ ही 2 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। और ये दिवस उनकी सेहत को लेकर के मनाया जाता है।
1: एक शक्ल है इनविटेशन की, गत कुछ भी बनाओ नेशन की, तुम जान हो उस जनरेशन की, जो दिल पे चलाती है गोली, जो दिल पे चलाती है गोली, साइकिल पे हसीनों।
0: और अब आपको बता देती हूँ कि ये रैली कहाँ हुई थी, जो वर्ल्ड बाइसिकल डे और संडे ऑन साइकिल की जो रैली थी, ये हमारे यहाँ धर्मशाला में, ये रैली साई धर्मशाला स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई थी हाल ही में 24 मई 2026 को हुई। रैली का को मशहूर पहलवान बबीता फोगाट ने हरी झंडी दिखाई थी। और इसके बाद पहली और 2 जून 2026 को भी वर्ल्ड बाइसिकल डे के मौके पर यहां पर बड़ा आयोजन किया गया था। चलिए बहुत देर हो गई है हमको भी आपसे बातचीत करते करते और सुनवाते सुनवाते ये प्यारे प्यारे से गीत। अब कार्यक्रम में समय हो गया एक छोटे से अंतराल का, यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला से गूंज अपने पन की।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्रोताओं, जो अभी आपने सुना जनगणना, जी ये भी शुरू हो चुकी है 1 जून से लेकर के 15 जून तक तो आप स्वगणना कर सकते हैं, यानी कि 16 जून से जो प्रतिनिधि हैं वो आपके घर में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले से अपनी स्वगणना की होगी, चाहे अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर, तो आपको एक रसीद वहाँ से प्राप्त होगी। बस वहाँ पर सही सही जानकारी आपको देनी है और वो रसीद आप उस व्यक्ति को जो प्रतिनिधि होगा जनगणना करने वाला, उसको आप जब जा करके देंगे तो उसका भी समय बचेगा और आपका भी समय बचेगा। होता क्या है ना कि कई बार हम घर में नहीं होते हैं किन्हीं कारणों से, और वो आता है चला जाता है, फिर दोबारा आता है फिर चला जाता है, तो उसका समय बच जाए और आपका भी समय बच जाए, बाकी ज़्यादा चक्रों में ना पड़ना पड़े। तो स्वगणना भी आप कर सकते हैं, 15 जून तक आपके पास समय है। आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने कर ली है, बहुत मुश्किलें हुई, कई बार तो हो भी नहीं रहा था, लेकिन एट लास्ट कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, धीरे धीरे धीरे धीरे बार बार जब हमने कोशिश की तो आखिरकार ये जो जनगणना है हमने अपनी तरफ से अपने घर की तो कर ही ली है। चलिए अब आपको बताते हैं 4 जून के बारे में। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का

से आप श्रोताओं के साथ एक पौधा लगाने की अपील जरूर करेंगे, और सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है, उसे बड़े होते हुए भी देखना है ना। तो उसमें जो खुशी मिलेगी ना आपको, वो दुनिया भर की बाकी सभी चीजों से अलग होगी। और ये जो पंछियों की आवाज़ें सुन रहे हैं ना आप, ये मेरे घर में रोज़ सुनती हूँ मैं। सुबह 3:30 बजे से शुरू हो जाती हैं पंछी बोलना, मैना, कोयल।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि कल गांधी स्मृति वाटिका कोतवाली बाजार में एक विशेष संगोष्ठी और जागरूकता रैली का भव्य आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ठोस रणनीति और जन जागरूकता पर जोर दिया गया।

इस आयोजन में धर्मशाला की प्रमुख सामाजिक और पर्यावरण संस्थाएं जैसे जनचेतना, एजुक्वेयर इंडिया, वेस्ट वॉरियर्स, नगर निगम धर्मशाला, जागोरी धर्मशाला, एनवायरमेंट ग्रुप, धौलाधार क्लियरेंस, निष्ठा, तिब्बत सरकार निर्वासन, SBI व्यापार मंडल धर्मशाला और रेडियो गुंजन धर्मशाला ने भी अपनी सहभागिता दर्ज करवाई।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष के लिए निर्धारित थीम है अब जलवायु के लिए, नाउ फॉर क्लाइमेट। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। पिछले मानसून के दौरान प्रदेश ने प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जो त्रासदी झेली है उसे देखते हुए जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना और उस दिशा में ठोस कदम उठाना अब अनिवार्य हो गया है।

श्रोताओं, इस संगोष्ठी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग, वन विभाग, नगर निगम और विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए और नई पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के लगभग 15 से 20 छात्रों ने भी भाग लिया। विद्यार्थियों ने स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, लघु भाषण और कविता जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित की और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर के सम्मानित भी किया गया। और आखिर में कार्यक्रम का समापन एक सार्थक रैली के साथ किया गया। और आपको बता दूं कि हम भी इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा थे। हमने एक रेडियो रिपोर्ट तैयार की है कि उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। चलिए, वैसे हमारा ये सेगमेंट रहता है आप लोगों से बातचीत

0: करने का, लेकिन आज हम आपको सुनवाएंगे पिछले कल की इस कार्यक्रम की ये रेडियो रिपोर्ट।
1: झील के खाल जमी की टुकड़ा टुकड़ा बांट रहा है। नमस्कार मुख्य अतिथि महोदय व यहाँ उपस्थित समस्त प्रबुद्ध वर्ग और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम उजस्वी है, मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मैं भगीरथ दास दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल धर्मशाला की छात्र हूँ। आज मुझे जिस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है वह विषय है पर्यावरण। आज मैं केवल एक भाषण देने नहीं बल्कि सच्चाई सुनाने के लिए, चेतावनी देने के लिए और जिम्मेदारी जगाने के लिए खड़ी हूँ। आज का दिन 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या हम अपने पर्यावरण के साथ न्याय कर रहे हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, हवा, यह सब नहीं है। पर्यावरण हमारी जान है, हमारी शान है, हमारे दिलों में बसी है, हमारे धड़कनों में है। जब हम सुबह उठकर ताजी हवा लेते हैं, जब हम नदियों का स्वच्छ पानी पीते हैं, जब हम हरे भरे पेड़ों में सुकून महसूस करते हैं, यह सभी पर्यावरण की ही देन है। मगर सुनो सुनो सुनो, आज यही पर्यावरण खतरे में है। और सबसे बड़ी बात, यह खतरा बाहरी नहीं है बल्कि हम मनुष्यों से है। हम पेड़ों को काट रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि सब ठीक है।
0: बच्चों ने स्लोगन राइटिंग और पोइट्री कंपटीशन में भी भाग लिया।
2: पर्यावरण जिसका अर्थ है हमारे आसपास की हर वे वस्तु जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पर्यावरण हमारे जीवन जीने का आधार है, तो क्या इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं? क्योंकि प्रकृति देती प्यार अपार, नहीं करती कोई विचार। हवा, जल, फल और फूल सब देती बिना किसी भूल, सब देती बिना किसी भूल। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि यह प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प है और एक स्पेशल थीम के साथ मनाया जाता है। और इस साल का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर।
3: थैंक यू सो मच।
0: प्रभात शर्मा जी ने बच्चों को संबोधित किया।
4: जिला कांगड़ा में जो पहले पंजाब का पार्ट था, पहला बंदोबस्त 1868 में हुआ, उसके बाद अंग्रेजों के टाइम में हुआ, भारतवर्ष में वैसे पहले बंदोबस्त 1848 में वेस्ट बंगाल में हुआ और यहाँ पंजाब में 1868 में। उसके बाद 1912 से 17 तक बंदोबस्त हुआ यहाँ, और 1912 से 17 के बंदोबस्त में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में एक एंट्री आती थी जो हमारे सरकारी रिकॉर्ड होता था, उसमें क्या एंट्री आती थी? वन के संबंध में। उस वक्त जंगलों में, वन क्षेत्र में पेड़ लगाए जाते थे और लगाने वाले गांव के लोग होते थे, सरकारी तंत्र नहीं होता था। गांव के लोग लगाते थे, बगीचे लगाते थे, फलदार पौधे, छायादार पौधे, इमारती लकड़ी के पौधे, ऐसे ऐसे पौधे लगाते थे। और उन पौधों की एंट्री जो इंदिराज जो था रेवेन्यू रिकॉर्ड के खाना कैफियत में, विवरण खाना में होता था कि फला आदमी ने ये पौधा लगाया और इस पौधे का अगर फल होगा बेचेगा कोई नहीं, फल होगा सारे खाएंगे, इसको कोई बेचेगा नहीं और एक आदमी नहीं, जब गिरेगा पक्के तो सारे खा लेंगे, झाड़ेगा कोई नहीं, ये एंट्री होती थी। और साथ में अगर ये पौधा गिर जाता है तो इसकी लकड़ी जो है उस व्यक्ति को उसका अधिकार होगा जो जिसने उसको लगाया, जिसके खानदान ने उसको लगाया है, ये एंट्री थी। लेकिन जब सन 1970 के बाद जब बंदोबस्त हुआ तो ये एंट्री खत्म कर दी गई। बहुत खेद होता है क्योंकि सरकारी तंत्र में मैं ये महसूस करता हूं कोई स्कीम कामयाब नहीं होती, सिर्फ कागजों में होती है। ये पब्लिक के लिए था और इसी के आधार पर लोग सुरक्षा करते थे जंगलों की, और उसी आधार पर लोगों को टीडी दी जाती थी।

0: टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वो इसी के आधार पर दिया जाता था, क्योंकि लोग सुरक्षा करते थे जंगल की। अब आज सुरक्षा कोई नहीं करता, आग लगाते हैं सिर्फ, और आग बुझाने के लिए कोई नहीं जाता, लोग नहीं जाते, क्योंकि लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए, लोगों को टीडी नहीं मिल रही, लोग प्लांटेशन वहां नहीं कर रहे, क्योंकि प्लांटेशन करने वाले कौन लोग होते थे, जो जंगल में जाते थे, ग्वाले जाते थे, वो प्लांटेशन करते थे। अब ग्वाले है नहीं, गौएं खत्म हो गई, गौएं सड़कों पर है, कौन कौन लगाएगा, प्लांटेशन कौन करेगा, और लगाने भी नहीं दे रहे, फिर इंदिराज भी नहीं हो रहा हमारा, तो क्या लगाने का क्या लाभ है। तो ये तंत्र में खामी आई है, इस वजह से ये सारा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जल और वायु की सुरक्षा के लिए वन ही है जो इसकी सुरक्षा कर सकता है, और इसी के आधार पर हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित रह सकता है। ये हमें मुहिम दोबारा हम चालू करनी चाहिए कि सरकार को ये कहना चाहिए, उस पर प्रेशर बनाना चाहिए कि जंगलों में हम पेड़ लगाएं और उसका इंदिराज हमारे नाम हो, हमारे खानदान उसमें ये एंट्री हो, और उसका जो लाभ है वही लोग प्रयोग करें जिसने वो जंगल लगाया है। तो जब जंगल होगा तभी हमारी सुरक्षा होगी, तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा, अन्यथा जंगल कट रहे हैं, बेतरतीब कट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कट रहे हैं, कहीं बह रहे हैं, और जंगलों के ना होने की वजह से हमारा पर्यावरण, हमारा गर्मी जो है कितनी बढ़ रही है। आज धर्मशाला में देखिए, पहले हमारा स्नो लाइन जो था धर्मशाला का, ये सकू के नीचे जगह है एक, जहां जामुन का दरख्त है बड़ा, वहां तक स्नो लाइन थी, अब स्नो लाइन कहां पहुंच गई ऊपर, अब रेन लाइन भी वहां तक नहीं है, रेन लाइन भी अब ये कोतवाली तक ही आ गई, सुको तक तो अब रेन लाइन भी नहीं है जहां तक बारिश हो। तो ये क्या वजह है, इसका कारण है ये सारा पर्यावरण जो हमारा प्रदूषित हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है, वृक्षों को हम बचा नहीं पा रहे, हम लगा भी नहीं रहे, बचा भी नहीं रहे, क्योंकि ये सारा तंत्र हमने सरकार पर छोड़ दिया है, और सरकार कौन है, वो सिर्फ कागजों में एंट्री करके इतने दरख्त लगा दिए, और बचाने की सुरक्षा के लिए जिम्मेवारी किसी की नहीं है। तो मैं आप सब लोगों, बच्चों को, प्यारों बच्चों को जो भविष्य के कर्णधार हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, उनको ये आगाह करूंगा कि एक वृक्ष, जैसे कहा गया है कि अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष को कहीं ना कहीं लगाओ, अपने घर के आसपास में जगह नहीं है तो जंगल में लगा के आओ, और उसकी सुरक्षा करो साथ में, अगले जन्मदिन में देखो कि उसका उसका पौधा कितना बड़ा हुआ है।
1: छोटे बच्चों ने प्रोग्राम का समापन किया एक प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा लेकर के,
2: प्लेज टू क्रिएट एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट सस्टेनेबल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स Personally and professionally.
3: Personally and professionally.
2: We promise to serve as an
3: example of
2: how
3: practicing
2: healthy living professionally
3: impacts
2: both the community and our planet.
3: We will reduce, reuse, and recycle.
2: Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. यह प्रकृति चुप है, बेबस नहीं, एक दिन जवाब देगी जरूर कहीं, एक दिन जवाब देगी जरूर कहीं।
1: श्रोताओं आपने सुना ये रेडियो रिपोर्ट जो कि हमने कल रिकॉर्ड किया था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था गांधी स्मृति वाटिका में। और अब पर्यावरण से जुड़ा हुआ ही एक प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं। तारा फिल्म का गीत है, भूपेंद्र और लता मंगेशकर की मनमोहक आवाज़ें।

श्रोताओ, अगर आज की बात करूं तो आज विश्व कीट दिवस है और इस दिन का उद्देश्य लोगों को घर, दफ्तर और खेतों में हानिकारक कीड़े मकोड़ों से होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू और अनाज की बर्बादी के प्रति जागरूक करना है। इसमें साफ सफाई बनाए रखने पर भी जोर दिया जाता है।

विश्व कीट जागरूकता दिवस को मनाने की शुरुआत 6 जून 2017 को बीजिंग से हुई थी। इसे चीनी कीट नियंत्रण और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों, सरकार और मीडिया को हानिकारक कीड़े मकोड़ों जैसे मच्छर, दीमक, चूहे और काकरोच से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों जैसे मलेरिया, डेंगू और फसलों व भोजन के नुकसान के प्रति जागरूक करना है। लेकिन श्रोताओं, आपको बता दें कि सभी कीट बुरे नहीं होते हैं।

प्रकृति में कई मित्र कीट जैसे मकड़ी या ड्रैगन फ्लाई भी होते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीड़ों को खा करके किसानों की मदद करते हैं और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने में सहायक होते हैं।

0: तो दोस्तों, सितारा फिल्म के इसी गीत के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम आपको याद दिलाएंगे वो दिन जब हमने मनाया था विश्व अर्थ डे, यानी कि वर्ल्ड पृथ्वी दिवस। मैंने थोड़ा सा इसे अलग तरीके से कहा है, समझ में आया आपको? विश्व पृथ्वी दिवस, अगर सही तरीके से कहूं तो हिंदी में और अगर अंग्रेजी में कहूं तो वर्ल्ड अर्थ डे। और उस दिन हमारी बात हुई थी एक जागरूक श्रोता के साथ, जिन्होंने खुद ही इनिशिएटिव लिया था और हमसे की थी बातचीत। किस बारे में? आज आपको वो बातचीत दोबारा से सुनवाना चाहते हैं हम। तो क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? हम तो बिल्कुल तैयार हैं आपको सुनवाने के लिए। आपने शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन वो बातचीत कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है, आज के संदर्भ में भी उसको नकारा नहीं जा सकता। आइए सुनते हैं।
1: हेलो,
2: नमस्कार जी,
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बात कर रहे हैं और आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है अपना, आप पहले तो वो बताएं, अपना परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम सूरज है, मैं गांव घरों से बिलोंग करता हूं और मेरा कारोबार है धर्मशाला में।
1: अच्छा जी, जी बताएं क्या कहना चाहते हैं।
2: मैं बात करना चाहता हूं, जैसे आज का दिन बड़ा खास है, मैं आपका सुन रहा था प्रोग्राम भी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि जो धर्मशाला में जो कूड़ा का ये ई वेस्ट का और बाकी उसका एक वो बनाया हुआ डंपिंग साइट, आपने देखा ही होगा हाल फिलहाल में धर्मशाला में कितनी ज्यादा बदबू शुरू हो गई है, और वो बदबू जो है वो ये जो डंपिंग साइट है नीचे बस स्टैंड की जो वो है वर्कशॉप है HRDC की, उसके पास डंपिंग साइट है एक, उसके कारण वो इतनी बदबू हो गई है कि वो धर्मशाला बाजार तक पहुंच चुकी है बदबू,
1: कोतवाली बाजार तक।
2: मतलब मैं जब भी रोज सुबह नहा धो के यहाँ से जाता हूँ अपने कारोबार के लिए, तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है और वो बदबू टिल धर्मशाला तक बाजार तक भी अब पहुंच चुकी है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कुछ समझ से ही बाहर हो गया है। इतनी पहले ही जनता ने कंप्लेंट्स करी हैं, सब कुछ किया है, पर पता नहीं प्रशासन कुछ सोचता ही नहीं है इस बारे में।
1: तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए?
2: हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। देखो अभी दुनिया में जैसे मेरे को शौक है थोड़ा न्यूज से मैं ज्यादा अटैच रहता हूँ, एक तो डंपिंग साइट शहर के बीच में होनी नहीं चाहिए थी, डंपिंग साइट ऐसी जगह बनानी चाहिए थी जो ह्यूमन हैबिटेट से दूर होती। दूसरी, सिर्फ डंपिंग साइट बनाने से कोई फायदा नहीं है, वो कूड़े की सेग्रीगेशन नहीं है, कूड़े की वेस्ट की कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आप देखेंगे अब बाहर की कंट्रीज में इतना एडवांस सब कुछ हो चुका है कि हर चीज को सेग्रीगेट करने के लिए मशीन्स हैं, कि मतलब वेस्ट को एक्चुअल में वो वेस्ट ना रहे, वो वेस्ट से कुछ अच्छा प्रोडक्ट बन जाए, उसके लिए मशीन्स लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है।
1: हमारे यहाँ पर भी वैसे वेस्ट बैरियर्स वाले जो हैं वो कुछ तो काम कर रहे हैं। हाँ, वो आपकी बात सही है कि अब क्योंकि देखिए अगर कोतवाली बाजार वाले जो हैं इस चीज को फेस कर रहे हैं तो जो लोग वहां पर रहते हैं उस गांव में
2: बहुत बुरा हाल है वहां। तो मतलब अब तो ऐसा है कि मेरे को लगता है कि और शायद थोड़े समय बाद तो अजीब अजीब सी बीमारियां शुरू हो जाएंगी लोगों को, हो तो अभी भी चुकी होंगी, जो मतलब कोई बता नहीं सकता कि ये कूड़े की वजह से ही हो रही है। बारिश में ये जब पानी गिरता होगा उस कूड़े पे सारा, तो वो कूड़े से पानी पूरा अपने केमिकल्स को लेके सब कुछ लेके वो नीचे खड्ड में पहुंचा देता होगा, और वो पानी जो है वो पूरा नीचे तक जाता है, वो मांझी में मिलके सब नीचे गगल्स को होके वो गगल वगैरह होके नीचे तक जाता है। तो ये सिर्फ धर्मशाला नहीं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को बीमार करने का इन्होंने मसौदा बना दिया है।
1: तो आप इसमें ये बताएं कि आप अपनी जिम्मेवारी कितनी लेते हैं कि आपके घर से जो कचरा है वो कम निकले?
2: देखिए जी, मेरे घर में तो मेरा बहुत अच्छा सा सिस्टम है, जितना पेपर वेस्ट है वो मैं अलग रखता हूँ और वो मैं अपने ऑफिस लेके जाता हूँ, जहां पे मैंने दो डस्टबिन बनाए हैं, एक वेट वेस्ट का और एक ग्रीन वेस्ट का।
1: जी,
2: तो वो ग्रीन वेस्ट वाले में मैं डालता हूँ जो ड्राई वेस्ट होता है, कि इनको भी प्रॉपरली सेग्रीगेटेड कूड़ा मिले और ये जहां लेके जाते हैं वो भी हो जाए। और वेट वेस्ट मेरे घर से निकलता ही नहीं है, क्योंकि जितना मेरा किचन का सामान होता है, छिलके होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी मैं अपनी खाद बना लेता हूँ घर में खुद। तो इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि हम लोग खुद सोचें, हम लोग अपने आप पहल करें पहले, है
1: हाँ बिल्कुल,
2: ना
1: यही
2: जी?
1: तो हम समझाना चाह रहे हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आज सारी जनता को।
2: हाँ, तो देखो हम तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, पर बहुत दुख होता है कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पा रही है।
1: जी अगर प्रशासन में बैठे किसी भी अधिकारी तक हमारी ये बात पहुंच रही है तो अब हमें लगता है कि इट्स अ हाई टाइम कि आपको कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाना होगा, और आप कर भी रहे हैं, उठा भी रहे हैं, लेकिन वो सही दिशा में उठ रहा है, वाकई में ग्राउंड लेवल पे काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उस बारे में हमें थोड़ा सा और जागृत होने की जरूरत है। धन्यवाद सूरज जी आपका बहुत बहुत, आपने रेडियो गुंजन धर्मशाला को अपना बहुत कीमती वक्त दिया।
2: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
0: श्रोताओं भी आपने बातचीत सुनी सूरज से, जिन्होंने हमें बताया कि वो जो डंपिंग साइट या फिर यूं कहूँ प्रोसेसिंग साइट है उसके बारे में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि जब हम ये कार्यक्रम कल वहाँ पर कर रहे थे, देख रहे थे, जो आयोजक थे उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि गांधी स्मृति वाटिका तक वो जो स्मेल थी ना, वो आज भी आ रही थी, कल भी आ रही थी। और अगर आज आप वहाँ जाएंगे, वहाँ उस स्मृति वाटिका में बैठेंगे, जो कि बेशक बहुत सुंदर बनाई गई है, नेहरू स्मृति वाटिका भी बहुत सुंदर बनाई गई है, वहाँ पर लोगों के बैठने के लिए ही उसको बनाया गया है, जो लोग अपनी बसेस का इंतज़ार करते हैं या फिर बहुत थके हारे आते हैं बड़ी दूर दूर से, तो वहाँ पर बैठ करके उन पेड़ों की छाँव में थोड़ा देर आनंद ले सकते हैं, लेकिन वहां पर वो बैठ नहीं पाते हैं उस बदबू के कारण। और इसी विषय पर हमने नगर निगम आयुक्त जफर इकबाल जी से भी बात की थी, या यूं कहूं कि उन्होंने हमसे बात की थी, वो बातचीत भी हम कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाने वाले हैं। तो यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं इधर से उधर होने की इजाज़त आपको आज हम नहीं देंगे, बिल्कुल टस से मस नहीं होना है। क्योंकि देखिए ना, जब आप इस तरह के कार्यक्रम सुनते हैं तो आपकी भी तो एक जिम्मेवारी है कि आप भी तो जाने कि आखिरकार हो क्या रहा है हमारे आसपास में। केवल शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा अगर आप जागरूक होकर के सुनेंगे ना, तो सुनने से भी आप, हम ये मानते हैं कि आप जागरूक नागरिक बनते हैं, क्योंकि आप सुनेंगे तभी सवाल करेंगे, और अगर सुनेंगे नहीं, कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ ध्यान ही नहीं देंगे, तो सवाल करना तो दूर की बात है, आप ऐसे ही जो चलन चला हुआ है उसके साथ चलते चले जाएंगे। फिलहाल आप सभी के रेडियो सेट पर आ रहा है बड़ा प्यारा सा गीत, एक नज़र फिल्म का ये गीत है।

जी पत्ता पत्ता और बूटा बूटा तो सबका हाल जानता ही है, लेकिन हमने कभी भी पत्ते और बूटों का हाल जानने की कोशिश नहीं की। आपने वाकई में की है, तब तो आप बहुत बढ़िया नागरिक हैं। सिर्फ एक पेड़ लगा देना और बाद में उसको ऐसे ही छोड़ देना, फोटो खिंचवा लेना, अखबारों में छा जाना, क्या यही है पर्यावरण दिवस

हम बात कर रहे हैं विश्व हरित छत दिवस की, और ये सभी दिवस एक के बाद एक चले आते हैं दोस्तों, ऐसे कि हमारी जान नहीं छोड़ते और बता देते हैं कि भाई देखिए हम सब एक हैं। और कल हमने बात की पूरा दिन भर पर्यावरण को लेकर के, यहाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वहाँ आयोजित हो रहा है, लेकिन आपको पता है दूसरी ओर प्रकृति क्या दिखा रही थी हमको। रात को 10:04 पर जो ये हिलनी बोलते हैं ना उसको, जो शेकिंग हुई है, अर्थक्वेक हुआ है, उसने सबको याद दिला दिया कि सबके असली चेहरे कैसे हैं। क्योंकि प्रकृति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो भी कुछ दिखावा कल किया गया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी जगह एक जैसा ही हुआ, लेकिन हाँ कई जगह तो दिखावा भी हुआ है, और जिन्होंने किया है वो ये बात जानते हैं। पत्ता पत्ता, भूटा भूटा। और कई लोग तो दिल से इस धरती को अपनी माँ मानते हैं और चाहते हैं कि ये हरी भरी बनी रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियों जनरेशंस तक को फायदा देती रहे।

0: श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे उस बातचीत की ओर जो हमने की थी जफर इकबाल सर के साथ। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको
1: कि आपकी जो समस्याएं होती हैं उनको हम प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करते हैं। तो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं धर्मशाला नगर निगम के आयुक्त श्री जफर इकबाल जी। सर भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें भी इस खास अवसर पर हमारे साथ जुड़ करके उतना ही आनंद आ रहा होगा। हमारे सारे श्रोता, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग, ये चाहता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही सुंदर दिखे और उस सुंदर दिखने के चलते वो अपना हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अपने हाथ में होती नहीं है और हमारे आसपास कुछ ऐसी गतिविधियां चाहे अनचाहे चल रही होती हैं जिस पर कि लोगों का रोष जाहिर होता है। तो चलिए करते हैं हम सर से बात कि आसपास में क्या चल रहा है और उसकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो उनकी कैसी है। तो स्वागत करते हैं हम सर का और करते हैं सर से बात। नमस्कार सर
2: जी। नमस्कार।
1: तो सर, जैसे ये सुधेड़ से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं लोगों की कि डंपिंग जोन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और अब पता नहीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सेग्रीगेशन वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आखिरकार हो क्या रहा है। और जो ये स्मेल बहुत चली हुई है, जैसे आप कंप्लेंट्स आई कि पीछे जैसे जब गर्मियां बहुत ज्यादा हो गई थी अब एक महीना पहले ही, तो जो स्मेल है वो कोतवाली बाजार तक जा रही थी, तो वहां पे लोगों का बैठना बड़ा मुश्किल था। तो सर, इसमें आगे इन फ्यूचर क्या किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने मुझे मौका

0: दिया। और मैं ये मानना चाहूंगा कि धर्मशाला सिटी के अंदर जो आपने जिस टॉपिक के ऊपर मेरे से डिस्कशन शुरू किया है, ये बड़ा डीप टॉपिक है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहली बात, जो पूरी सिटी का जो आपने सुधीर में बोला, बेसिकली वो डंपिंग साइट नहीं है।
1: ओके,
0: डंपिंग साइट तब होती थी जब कहीं प्रोसेसिंग ना हो रही हो, लोग डंप करते हैं, उसे लेगेसी वेस्ट बनता है। तो पहले जब वहाँ एक लेगेसी की साइट है, जो पहले कभी डंपिंग साइट हुआ करती थी, आज उसके अंदर ऑलमोस्ट 1,00,000 टन का लेगेसी वेस्ट सालों से इकट्ठा हुआ था। हम उसमें से 60% क्लियर कर चुके हैं।
1: ओके,
0: और हम नया जो शहर का जितना भी हमारा गार्बेज वगैरह है, वो हम उसमें 1 किलोग्राम भी डंप ऐसे नहीं होता जो लेगेसी बन रहा हो।
1: तो सर नया कहाँ जा
0: रहा है? जो आता है उसको प्रोसेस करते हैं।
1: okay.
0: अब उसमें इसीलिए जो सुधेड़ में है आज की डेट में, वो डंपिंग साइट नहीं है बल्कि प्रोसेसिंग साइट है
1: जी।
0: उसको हम MRF बोलते हैं, कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। उसमें क्या होता है, और हमारे यहाँ दो ऐसी फैसिलिटीज हैं, एक वहाँ, एक चरान में नीचे है, वो जो वेस्ट वॉरियर्स एज एन NGO वो उसको ऑपरेट करते हैं, और जो सुधेड़ में है वो भी हमारे एक वेंडर ऑपरेट करते हैं। अब प्रोसेस ये रहता है कि हमारे जितने सफाई साथी हैं, ये धर्मशाला में हर घर से सुबह हर रोज बारिंग संडे कूड़ा उठाते हैं। हम आपके माध्यम से ये हर धर्मशाला वासी को बोलना चाहते हैं कि वो गीला और सूखा कूड़ा, उनको हमने पैम्फलेट दिए हैं, हमने IC कैंपेन चलाई है, आपके माध्यम से मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, वो कोई भी चीज़ जो बायोडिग्रेडेबल है उसको हम जो है गीले में मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका किचन का वेस्ट हो गया, जिससे आप इस तरीके से आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अगर उसको रखने से थोड़ी देर बाद बदबू आने लगे तो गीला कचरा है
1: जी।
0: वो अलग रखें, और जो सूखा है जिसमें हमारे पास कोई प्लास्टिक की बॉटल होगी या अदरवाइज रैपर्स हो गए या कुछ हो गया, उसको अलग रखें। तो ये कैंपेन होती है, इसको कहते हैं सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स। ये हमारे यहाँ धर्मशाला में मैं मुबारक देना चाहूँगा, बहुत लोगों ने बहुत वार्ड्स में इसको अडॉप्ट कर लिया है। और पर अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ हमने NGO इन्वॉल्व किए, हमने वॉलंटियर्स इन्वॉल्व किए हैं, वो हर घर जाके समझाते हैं। अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा, कम से कम 30-40% ऐसे लोग हैं जो अभी पूरा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे
1: जी।
0: हमारी सोच है कि हम इस साल के अंदर अंदर 90% से ऊपर जो है 95% तक हम सोर्स एग्रीगेशन करें
1: जी।
0: उससे क्या होगा कि उससे जब गीला कूड़ा और सूखा अलग लगा जाएगा तो उसकी प्रोसेसिंग अलग जगह है। जैसे जो हमारी गीले कूड़े की प्रोसेसिंग है वो बायोगैस प्लांट है, वो हमारे यहाँ चरान में एक बायोगैस प्लांट है, तो गीला कूड़ा वहां जाता है, उससे बायोगैस बनती है, उस बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर उससे सेल्फ रन चलता है प्लांट। तो एक सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी के बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, और वो हिमाचल का अर्बन डेवलपमेंट में पहला बायोगैस प्लांट है जो चल रहा है,
1: चल रहा है
0: बिल्कुल।
1: और मुझे लगता है शायद लोगों को ये बात पता नहीं है, और आपके माध्यम से अब पता लग गई।
0: थैंक यू, आपने मौका दिया। सेकंड, जब ऐसा ही जब सेग्रीगेटेड सूखा कूड़ा जब जाता है, वो जाता है सुधेड़ में, उसकी यहाँ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बोलते हैं। उसमें वहाँ कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से उसमें बहुत बहुत सारी अलग अलग ग्रेड के जो है वो मटेरियल होता है, जैसे कोई प्लास्टिक हो गया, कोई कुछ हो गया। उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ मशीनों में अलग अलग बैच बनते हैं चीजों के
1: जी।
0: वो बैचेस बनते हैं, वो फिर अलग अलग इंडिया में अलग जगहों पे रिसाइकलिंग के प्लांट्स हैं, तो उसको रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल करके कुछ ऐसा बनाया जाता है जो दोबारा रीयूज हो
1: जी।
0: तो इसको सर्कुलर इकोनॉमी में 3R यूज करते हैं, कि यू रिड्यूस द प्लास्टिक, रिड्यूस द बैड थिंग्स जो नॉन डिकम्पोजेबल है, जो यहाँ का रिसाइकल हम करते हैं और फिर रीयूज के लिए करते हैं। तो आपने जहां तक बात शुरू की कि पीछे बदबू आई थी, उसका एक रीजन है
1: जी।
0: रीजन ये था कि जो पिछले बरसात के टाइम पे जो हमारा फ्रेश, जो हम ये बोलेंगे कि जो फ्रेश वेस्ट है, वो बरसात के टाइम पे वहां पे लैंडस्लाइड हो गया था MRF में सुधेड़ में
1: जी।
0: वो काफी महीनों तक का प्रोसेस नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। फिर वो जब वहां पे हमने रोड दोबारा बना दी, उसको जहां से लैंडस्लाइड होता है उसको हमने रिस्टोर रिकॉर्ड टाइम में किया, और उसके बाद हमने विलंब नहीं आने दिया प्रोसेसिंग में, तो वो जो एक ढेर जैसा थोड़ा लगा था, वो हमने नॉर्मली उसको निकालते हुए 15 दिन लग सकते थे, महीना लग सकता था, पर हमने क्योंकि हम इसको अर्जेंसी मान के हमने उनको बोला कि इसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। जैसे ही वो 3 दिन के अंदर क्लियर हुआ, रिकॉर्ड टाइम में हुआ, क्योंकि जब वो क्लियर हुआ तो उसके नीचे कुछ गैसेज होती हैं, वो निकली, वो सिर्फ उन्हीं 3 दिन के लिए निकली।
1: ओके
0: तो उन्हीं 3 दिन के लिए निकली और उस टाइम पे फिर लोगों को, क्योंकि उसका क्वांटिटी ज्यादा निकली तो लोगों को लगा कि पता नहीं क्या नया हो गया है।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, सब चीजों को मैंने समझाया और अभी आ जाके आप देखेंगे कोई वहां पे बदबू नहीं,
1: अब नहीं है,
0: नहीं है, वो सिर्फ 3 दिन आई थी।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे गर्मियों में ऐसा नहीं होगा,
0: 100% ऐसा नहीं होगा, और वो इसलिए वो भी हमने क्लियर जल्दी करने के लिए, ताकि जल्दी क्लियर हो और वहां पे ऐसी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए किया है। अब इसी के साथ साथ आपने इस मुझे मौका दिया, मैं धर्मशाला वासियों से अपील करना चाहूंगा, हमारा साथ दें। सबसे पहले जो हमारे सफाई साथी लेडीज जेंट्स आपके सामने, आपके घर, अपने बच्चों को परिवारजनों के साथ, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद कहीं सेक्रीफाइस करके आपके द्वार पे पहुंचते हैं, प्लीज आप उनको कूड़ा जरूर दें। नंबर टू, कूड़ा जो है हमने इतनी देर हो गई हमें बताते हुए, वो गीला और सूखा अलग
1: अलग करें,
0: ये आपका बहुत बड़ा सहयोग।

0: और यहाँ की हाइजीन के लिए और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं।
1: जी
0: जी
1: जी सर, मैं एक बात और जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो प्रोसेसिंग वहाँ पे चल रही है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनकी सेफ्टी का कुछ सोचा है कि मतलब उनको कुछ ऐसे चीजें दी जाती हैं जो वो पहने, हाथ में ग्लव्स और नीचे पाँव में बूट्स, गम बूट्स वगैरह, ताकि वो लोग सेफ रहें?
0: 100% वहाँ पे जो लोग काम करते हैं हमारे, बेसिकली जो वेंडर्स हैं जिनको हमने आउटसोर्स पे वो काम दिया है, उनकी वो रिटन डायरेक्शन गाइडलाइंस और हम चेकिंग भी करते हैं कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करें, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होती है, हम यहाँ मंथली प्रोग्रेस रिव्यू एक मीटिंग करते हैं, उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और ऑन एंड ऑफ टाइम के साथ साथ हम ये भी इंश्योर करते हैं कि उनके प्रोटेक्टिव गियर्स अगर फॉर एग्जांपल यूज़ करके डिग्रेड हो गया, उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तब भी हम इम्प्रेस करते हैं कि जो आउटसोर्स एजेंसी है उनका काम उनको प्रोवाइड करना, वो हम प्रोवाइड कराते हैं जरूर।
1: तो हम उम्मीद करें कि कुछ आने वाले सालों में वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा।
0: मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहूंगा कि धर्मशाला में जब मैंने ज्वाइन किया 2024 में,
1: जी
0: 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में धर्मशाला 3000 कुछ रैंक पे था, और एक साल के अंदर हमारा रैंक जो है वो बढ़ के अपनी कैटेगरी में जो है वो 400 कुछ हो गया।
1: Okay.
0: इस बार हम सोच रहे हैं कि पूरे इंडिया में अपनी कैटेगरी में धर्मशाला को हम टॉप 100 में लाएं। उसके चलते हमने बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं, बहुत सारी आईसी कैंपेन चलाई है, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें सेग्रीगेशन एट सोर्स मेजर चीज़ है, लोग लिटरिंग ना करें उसके बारे में चीज़ है। अच्छा, मैंने अभी तक, आपने देखा होगा, मैंने अभी तक कोई चलान की बात नहीं की, वो इसलिए क्योंकि प्रोविजन है, लेकिन मैं ये ट्रस्ट करता हूँ धर्मशाला वासियों पे कि यहाँ हमें डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मशाला वासी अपने आप को यहाँ शहर को साफ रख सकते हैं, सक्षम है, बाहर से आने वाले लोग तभी देखते हैं, अगर कहीं गंदगी पड़ी है तो वो और गंदगी डालते हैं, अगर नहीं पड़ी तो लोग बोलेंगे जी ये साफ शहर है। वो साफ शहर बनाने के लिए मुझे आप सबकी, धर्मशाला वासियों की सपोर्ट चाहिए। उसमें मेरा ये आपके माध्यम से ये एक अपील रहेगी कि वो बाहर लिटरिंग ना करें। कई घरों में देखने को मिलता है कि हमारे सफाई साथी उनके घर जाते हैं, वो कूड़ा तब नहीं देते, बाद में वो कूड़ा अपने घर से उठाते हैं और नज़दीक के किसी रोड साइड पे फेंक देते हैं, या पुराने टाइम पे जब एक कॉन्सेप्ट डस्टबिन का होता था, अब वो नहीं है। अब जब हम हर घर में जाके डोर स्टेप पे डिलीवरी दे रहे हैं, तो आज वो कॉन्सेप्ट हम ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई जाके अपना कूड़ा उठाएगा और डस्टबिन में डाल देगा, क्योंकि फिर वो उधर से काम डबल हो जाता है और वो विजिबली क्लीन नहीं रहती सिटी, तो वो लिटरिंग के हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग, खासकर बच्चे, स्टूडेंट्स, जो किराएदार हैं यहाँ पे, वो ये इंश्योर करें कि जिस मकान मालिक के यहाँ आप रहते हो, आप इंश्योर करो, मकान मालिक को बोलो कि वो डस्टबिन रखें और अपना कूड़ा वहाँ रखो, हम आपके घर से उठाएंगे। कोई नहीं आता, हमने उसके लिए ये भी डाला है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप वहाँ बता सकते हैं।
1: जी, वो तो बता सकते हैं अगर कोई नहीं आता है सफाई कर्मचारी तो। लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं, जैसे अभी आपने भी कहा और हम भी देखते हैं कई बार, कि जो कूड़ा है वो वहाँ नहीं देते सफाई कर्मचारी को, लेकिन बाद में जाकर के वो किसी ऐसे प्लेस पर रख देते हैं कि सफाई कर्मचारी वहां से उठा के ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो मंथली पर्ची है वो नहीं कटवाते हैं शायद। तो आपने कहा चालान मैंने शुरू नहीं किए हैं, तो अब क्या उन पर कोई कार्यवाही की जाएगी? 100%
0: शुरू होना है, 1 अप्रैल की हमने लास्ट डेट डाली थी। इसमें क्लैरिटी है, जिन जिन घरों से अगर घर चल रहे हैं और कूड़ा नहीं दिया जा रहा, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वो आसपास फेंकते हैं, क्लियर बात है। सेकंड, जो लिटरिंग हॉटस्पॉट्स हैं वो लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो वहाँ कैमरास के साथ कवर किए जा रहे हैं।
1: okay.
0: और सिर्फ यही नहीं, ये बहुत लास्ट रिजॉर्ट करना पड़ता है इंसान को। हम वहाँ पे चलानिंग भी शुरू करेंगे, और चलानिंग के साथ साथ हम नेमिंग और शेमिंग भी अनफॉर्चुनेटली हमें शुरू करनी पड़ेगी। सिटीज में हमारे जो शक्लें हमें पाई जाएगी कि जो कूड़ा फेंकते हैं और जो हमारी सर्विसेज का उपयोग नहीं कर रहे और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो हम उनका नाम भी प्रोमिनेंटली दिखाएंगे, चाहे न्यूज़पेपर में दिखाएं, चाहे पूरे शहर में, कि कौन लोग हैं जिनकी वजह से सिटी गंदी
1: है, बिल्कुल ऑनलाइन एक्सपोज किया जाएगा उनको।
0: और सिमिलरली कई लोग हैं जो इस सिटी की सफाई के लिए चैंपियंस हैं, जो लोग घरों के से बड़े अच्छे से नियमों का पालन करके हमें कूड़ा दे रहे हैं, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। और हर वार्ड में हमने ये ग्रीन वॉरियर्स, चैंपियंस का नाम देके हम उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। तो मुद्दा ये है कि किसी एक सिटी को साफ रखना ये जिम्मेवारी का काम है, ये सब की भागीदारी का काम है।
1: जी।
0: इसमें अगर सारे एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलेंगे तो हम जरूर

0: धर्मशाला सिटी को और भी मतलब साफ सुंदर और आई थिंक इंडिया की टॉप मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी हम इसको बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने रेडियो गुंजन धर्मशाला से बात की, इतना आपने कीमती समय अपना हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं तो श्रोताओं, ये अमूल्य बातचीत आपने सुनी 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और जिन श्रोताओं को नहीं पता है उन्हें एक बार बता दूं कि हमारे साथ थे नगर निगम आयुक्त जफर इकबाल जी। और इस लंबी बातचीत के बाद अब फिर से चलते हैं हम एक खूबसूरत गीत की ओर। देवता फिल्म का ये गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ी। और विश्व हरित छात्र दिवस के बारे में मैं बात कर ही रही थी आपसे,
2: गुल मोहर गर तुम्हारा नाम,
1: जिसे कि आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में।
2: हसाना भी हमारा काम होता।
1: इस गीत को तो आपने बहुत बार सुना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातचीत शायद आपको दोबारा सुनने को न मिले। तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत हाल ही में साल 2020 में ग्रीन रूफ विशेषज्ञों क्रिस ब्रिजमैन और डस्टी गेटगे द्वारा की गई थी। ग्रीन रूफ टेक्नोलॉजी में आधुनिक इंजीनियरिंग और पर्यावरण विज्ञान की मदद से कंक्रीट की छतों पर वाटरप्रूफिंग करके पौधों, झाड़ियाँ या फिर घास उगाई जाती है, मतलब पौधे भी उगाए जाते हैं। 2026 की थीम है विश्व हरित छत दिवस की आधिकारिक थीम है प्रकृति, यानी सिर्फ नेचर रखी गई है।
2: अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने।
1: कंक्रीट के जंगलों यानी शहरों में ये छतें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करती हैं और शहर के तापमान को ठंडा रखती हैं। बाढ़ से ये बारिश के अतिरिक्त पानी को सोख लेती हैं, बाढ़ से बचाव होता है, जिससे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव कम होता है और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा घट जाता है। और ये छतें हवा को साफ करती हैं, शहर के बीचों बीच पक्षियों, तितलियों और मधुमक्खियों के लिए एक प्राकृतिक घर यानी हैबिटेट बनाती हैं। अगर आपकी पूरी छत पर बागबानी मुमकिन ना हो तो भी आप अपनी छतों पर बालकनी में छोटे छोटे पौधे रख करके इस चीज की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। और जब एक छोटा सा पौधा आपके घर में आता है ना, चाहे वो फूलों वाला हो या न भी हो, मन को सुकून बहुत देता है।

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में ये गीत सुनते हैं और फिर करते हैं आपसे थोड़ी सी बातचीत।
1: दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती।
0: आप समझ रहे हैं ये जो गीत है ना, इसमें भी फूलों के रंग की बात की गई है।
1: पल पल
0: तो फूल कहाँ से आएंगे? जी बिल्कुल, हमारे पौधों से ही तो आते हैं।
1: ही सपने लेकर।
0: और अब आपको कल के बारे में भी बता दूं कि कल शाम को 6 से 8 बजे तक भी मैं रहने वाली हूँ आप सभी के साथ। और कल के कार्यक्रम में भी बने रहिएगा क्योंकि कल है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और साथ में कल के कार्यक्रम में मैं बात करूंगी आपसे सुमन कल्याणपुर के बारे में।
1: लेना होगा जन्म हमें कई।
0: और श्रोताओं, आज कार्यक्रम में जो भी बातें आपने सुनी, चाहे वो रेडियो रिपोर्ट थी या वो जो श्रोता थे हमारे साथ जो जुड़े थे अर्थ डे पे, और साथ ही में ये जो जफर इकबाल जी से हमने बात की, ये सारी बातें प्रासंगिक होती हैं विश्व पृथ्वी दिवस पर, जल दिवस के लिए, पर्यावरण दिवस के लिए, फॉरेस्ट संरक्षण दिवस के लिए, जितने भी हमारे पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं ना, सभी में ये बातें हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। इनका महत्व कभी भी कम नहीं होने वाला है। हो सकता है हम यही बातचीत आपको दोबारा भी किसी कार्यक्रम में सुनवाएं, खास करके तब तक जब तक कि उस जो डंपिंग जोन है, हम उसे अभी डंपिंग जोन ही कहेंगे, बेशक वो प्रोसेसिंग साइट हो गई है लेकिन बहुत कम मात्रा में अभी वहां से प्रोसेस हो रहा है कूड़ा।
1: मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की गली।
0: तो सरकार को या एमसी को हम यहाँ से पोक करते ही रहेंगे ताकि इस दिशा में जो काम है वो जल्द से जल्द हो और लोगों को इस बदबू से निजात मिले बहुत जल्द।
1: भीड़ के बीच अकेला, हाँ, बादल बिजली चल।
0: तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा जरूर। इसके साथ ही ज्योति पठानिया को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जल्द ही मिलूंगी कल शाम को आपसे 6 से 8 बजे के बीच। इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं,
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे,

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

FM पर यह है आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

दो मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: विकास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं,
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे,

0: Yes! नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी के लिए एक नई जानकारी के साथ आप सभी के साथ जुड़ते हैं और कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर एक और बहुत ही बेहतरीन और खास जानकारी के साथ एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं और इस कार्यक्रम को आप सभी सुनते हैं दोस्तों अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो मैम, स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत करते हैं मैम, तो ये बहुत खास हुआ ना, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है स्वस्थ रहना, खास करके बदलते मौसम के साथ, बदलते लाइफस्टाइल के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। तो इस बार ऐसी कौन सी बातचीत आप सभी के लिए लेकर आए हैं, ये सब जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना होगा हमारे साथ इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। तो मैम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आजकल, जैसे मैंने अभी पहले ही बोल दिया कि बदलती लाइफस्टाइल या बोल सकते हैं बदलते हमारे इस समय के साथ हम खुद को कितना बदल रहे हैं, आपको क्या लगता है किस एज ग्रुप में आपको सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
1: देखिए, जो टीनेज ग्रुप है, टीनेज से लेके जो यंग एडल्ट्स हैं,
0: जी
1: आई थिंक अराउंड 25 एज तक के बीच में, तो ये जो एज ग्रुप है यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जो कि पहले ये बोला जाता था कि ऐसे में टीनेजर्स को गुस्सा आता था पहले भी, क्योंकि वो उनकी एज ही ऐसी होती है
0: जी।
1: लेकिन आज के टाइम पे उनका जो एक बिहेवियर है वो इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि हर पेरेंट आज के समय पे बहुत ही ज्यादा चिंता में है। उनको यही लगता रहता है कि हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चा जो है हमारी बात सुने, समझे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंसर्न्स और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास पहुंच रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, मैम ने शुरुआत में परेशानियों की बात कर दी है, तो परेशानियां तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की हम बात करते हैं हर कार्यक्रम में, कोई एक ऐसी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो देख लीजिए, मैम ने शुरुआत की है परेशानियों के साथ, तो आप भी सोचकर देखिए कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं। तो आजकल आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें सामने आ रही हैं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं सामने आ रही हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं, कहाँ कमी है? सोचने वाली बात है कि ऐसी कौन सी कमी, क्योंकि आजकल तो हर कोई इतना अच्छे से अपने लाइफस्टाइल को बना रहे हैं कि हमें किसी भी चीज की परेशानी हो ही ना, फिर चाहे वो किसी चीज की हो या फिर किसी भी एक तरह से सुविधा की हो, हर सुविधा हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं।
1: सुविधाओं के साथ साथ परेशानियां और बढ़ती
0: जा रही हैं। जितनी सुविधाएं मिलती जा रही हैं उतनी ही परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन
1: सुविधाएं इसलिए बनाई गई थी
0: ताकि परेशानियां आसान हो सके,
1: परेशानियां कम हो सके। लेकिन देखिए, जो बड़े लोग इन्वेंशंस करते हैं, एडल्ट्स इन्वेंशंस करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत से हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला पाते हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं, पर उसके साथ साथ ये वैसा इम्पैक्ट है जो

0: उसकी वजह से सब लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं आज के टाइम पे।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो हम मेन मकसद हमारा यही है, यानी कि उद्देश्य यही है बात करने का कि आज के कार्यक्रम में ऐसी कौन सी बात की जाए। तो आप सभी को बता दे दोस्तों, आजकल आप सभी देख रहे हैं कि छोटी सी छोटी एज में बच्चों की एक तरह से कह सकते हैं सोचने की क्षमता ज्यादा बढ़ गई है, या फिर उनका मानसिक स्वास्थ्य इस तरह से प्रभावित हो चुका है कि वो छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं कि हर किसी के लिए शॉकिंग है। और आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी सी एज में बच्चे क्राइम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों ना आज उस पर थोड़ी सी बातचीत की जाए।
0: डेफिनेटली रुचिका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है
1: जी। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा सा इस पे सोच कर देखिए कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं जो बच्चों में देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से वो इस और बढ़ते जा रहे हैं। तब तक लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो आइए इस प्रयास को और आगे की ओर लेकर जाते हैं। और बच्चों की बात आती है तो हमें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से जुड़ी एक भी बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हमने नजरअंदाज किया तो फिर उसका नुकसान हमें झेलना पड़ता है। बच्चों को तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स को भी झेलना पड़ता है। तो एक एक बात, छोटी से छोटी बात हमें ध्यान में रखनी होगी। उसके लिए जानकारियां एकत्रित करना, यहाँ वहां से नॉलेज हमें लेना होगा, जानना होगा आखिर बच्चों की लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें इफेक्ट करती हैं। तो मैम बात कर रहे हैं कि आखिर बच्चे छोटी ही एज में क्राइम की ओर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों का माइंडसेट इतना आगे तक जा रहा है, इमोशनली, मेंटली या फिर किस तरह से?
1: ये देखिए बहुत ही गहरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है रुचिका। तो इसको हम लोग कुछ टुकड़ों में समझेंगे
0: जी।
1: पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं अपने ब्रेन या अपनी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को लेकर। पहले हम उस फैक्टर को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड देन एक जो पर्सनल, जो एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है उस फैक्टर। तो इसको हम लोग तीन भागों में अंडरस्टैंड करेंगे
0: जी, बिल्कुल।
1: सो सबसे पहले बात करते हैं हमारा ब्रेन डेवलपमेंट की
0: जी।
1: देखिए ब्रेन जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग का एक मास्टर है। हम किस प्रकार से निर्णय लेंगे ये निर्भर करता है कि हमारा ब्रेन डेवलपमेंट कैसा हुआ है। अब ये बात बहुत से कम लोग जानते हैं कि कम्प्लीट एंड मेच्योरली एक ब्रेन डेवलपमेंट को होने में इट टेक्स अराउंड 25 ईयर्स। यानी कि जब तक कोई भी युवा 25 साल तक की उम्र में है उसका ब्रेन डेवलप ही हो रहा है। अब ब्रेन डेवलपमेंट जब होता है तब ये एक प्रोसेस को फॉलो करता है जिसको आप समझ सकते हैं कि वो बैक टू फ्रंट एक प्रोसेस है। यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट पीछे से शुरू होगा और तब धीरे धीरे जाके वो आगे तक पहुंचेगा। यानी कि हमारे नेक से स्टार्ट होगा ब्रेन का डेवलपमेंट एंड देन आगे जाके हमारे माथे पर खत्म होगा। अब देखिए हमारा जो नेक का एरिया है वो सबसे पहले डेवलप हो जाता है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तब उसको एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर वो अपना सर का बैलेंस बनाना सीख जाता है, राइट
0: जी।
1: फिर वो चलना सीखता है, अपना बैलेंस बनाता है, वॉकिंग सीखता है
0: जी।
1: वो कैसे? क्योंकि जो वॉकिंग है, जो बैलेंसिंग है, जो एक स्पेस और मोटर कोऑर्डिनेशन है वो हमारा सेरिबेलम ब्रेन का एक पार्ट है जो हमारे पीछे होता है यहाँ पे
0: जी।
1: वो पार्ट इन चीजों का ख्याल रखता है। तो बच्चे में पीछे ब्रेन का पीछे वाला पार्ट डेवलप होना पहले स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे ब्रेन आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और डेवलप होना स्टार्ट करता है
0: जी।
1: तो उसके बाद आ जाता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। हमारा लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ब्रेन का जो कि हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। यानी कि हमारे अंदर फियर रिस्पॉन्स है, हमारे अंदर लव की भावना है, हमारे अंदर गुस्सा है, तो इन सभी इमोशंस को वो रेगुलेट करता है। तो जब तक बच्चा टीनेज में आता है वो बड़ा ही इमोशनल आप उसको देखेंगे कि उसके अंदर इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है। अचानक से गुस्सा आ जाएगा, अचानक से टैंट्रम्स थ्रो करने लगेगा। और टीनेज में है तो हार्मोनल डेवलपमेंट भी हो रहा है जिसके कारण से वो बहुत सारे इमोशंस को इंटेंसिवली महसूस करता है और उनकी ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी भी इनवेरिएबल होती है, कुछ फिक्स नहीं होती। जिसकी वजह से जब तक बच्चा एक टीनेज ग्रुप में आने वाला होता है तब तक उसका इमोशनैलिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी होती है। और उसके बाद जाकर धीरे धीरे जब ब्रेन फ्रंट तक पहुंचता है तो इस माथे वाला जो पार्ट है इसके पीछे जो ब्रेन का पार्ट है उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है ब्रेन का जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग का ख्याल रखता है, हमारे डिसीजन मेकिंग का ख्याल रखता है। यानी कि अगर हमें वाइज डिसीजन जीवन में लेना है तो वो हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ही ले पाएंगे। डिसीजन तो व्यक्ति पहले भी ले रहा है लेकिन वो पुअर डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी तक फुल्ली डेवलप हुआ ही नहीं है
0: जी।
1: तो वो डिसीजंस कैसे लेगा? अपने इमोशंस के आधार पे, क्योंकि इमोशंस तो डेवलप हो चुके हैं
0: जी।
1: अब इसी कारण से आप देखेंगे कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो इमोशंस में आके या तो खुद को सेल्फ हार्म कर लेंगे, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, बोलेंगे कि हम तो सामने वाले से बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ तक कि अगर आप उनको हर्ट करेंगे, अगर आप उन्हें पनिश करेंगे, या कई बार होता है पेरेंट्स या टीचर्स गुस्से में डांट देते हैं
0: बिल्कुल
1: उनके भले के लिए, बट उनको नहीं समझ में आता, उन्हें तो लगता है इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी है। अगेन एम्बैरेसमेंट एक इमोशन है, तो वो हर प्रकार का इमोशन महसूस कर सकते होते हैं, लेकिन उस इमोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस कैसे करना है, उसे प्रोसेस कैसे करना है, और सामने वाला इस इमोशनलिटी से क्यों बिहेव कर रहा है, सामने वाला क्यों गुस्सा हो गया, क्यों नाराज हो गया, ये बात बच्चा समझ नहीं पाता है। और ये कारण है कि एक जो एक ब्रेन का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे ये सब चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे एक गार्डनर जब पेड़ पौधों की कटाई करता है उसको बोलते हैं प्रूनिंग, ऐसे ही ब्रेन भी प्रूनिंग करता है। यानी कि अगर आप बच्चे को उसके बढ़ते हुए उम्र में, जैसे 7 से 8 साल का एक बच्चा है, अगर आपने उसको म्यूजिक में डाल दिया तो वो म्यूजिक के बहुत सारे न्यूरॉन्स क्रिएट करेगा, एक न्यूरल सर्किट्स को क्रिएट करना स्टार्ट करेगा
0: जी।
1: लेकिन एक उम्र के आने के बाद वो उन्हीं न्यूरल नेटवर्क्स की प्रूनिंग करेगा। जैसे कि आपके बच्चे ने अगर 2 साल म्यूजिक सीखा उसके बाद छोड़ दिया, तो बड़े होने के बाद वो 2 साल की जो न्यूरल नेटवर्क्स ऐसे हैं जो वीक हो चुके हैं वो उनको निकाल देगा, उनको फ्लश आउट कर देगा, जिससे कि वो बाकी चीजों पर ध्यान दे सके। इसलिए भी जब बच्चे सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा चीजें देखते हैं, मूवीज देखते हैं जो क्राइम रिलेटेड है
0: जी,
1: और वो उसी चीज से ही एक्सपोज हो रहे होते हैं, अपने आसपास के वातावरण में भी उसी चीज से एक्सपोज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनका न्यूरल नेटवर्क्स किसी अलग प्रकार का डेवलप हो चुका होता है, और प्रूनिंग करने के बाद भी वो न्यूरल नेटवर्क्स जाते नहीं है, विच अगेन मेक्स देम मोर वल्नरेबल टू मेक सच रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स
0: जी। तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि किस तरह से हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजें हमारी बॉडी में भी उसी तरह से चलती है जैसे हम जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम सोचे कि एकदम से ही हम मैच्योर हो जाते हैं, पूरी डेवलपमेंट एक साथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। मैम ने कहा 25 साल तक जो है हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है। तो हम जो है कोई भी डिसीजन एक तो इमोशनली होके ले लेते हैं, इमोशनली तो हमें हमारे जो इमोशंस हैं उन्हें रेगुलेट करना बहुत जरूरी है और वो होते भी रहते हैं, लेकिन हमें उसमें थोड़ा सा समझ बनाने की जरूरत रहती है। खैर मैम ने और भी इसके पार्ट्स के बारे में बात की है, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपनी बातों को ब्रेक देंगे और लेंगे एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और इस समय आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्यारे से कार्यक्रम को, बहुत ही खास कार्यक्रम को आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी दोस्तों, तो इस जानकारी को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि खास करके ध्यान तो पेरेंट्स को ही देना होता है, बच्चों को तो देना ही है, लेकिन अगर पेरेंट्स नजरअंदाज करेंगे तो बच्चे ऑब्वियसली नजरअंदाज करेंगे और उनकी फिर ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो हमारे हाथों से निकलती जाएंगी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नल तो हमें वहीं से मिलता है, चाहे हम सही कर रहे हैं चाहे हम गलत कर रहे हैं। तो मैम, अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, तो ऐसे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं?
1: देखिए, हम लोगों ने अभी एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट तो समझा ही है
0: जी,
1: लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट फैक्टर है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि हमारे सोशल एनवायरनमेंट में किस प्रकार के लोग हैं, उनकी किस प्रकार की सोच है, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है, वो किस प्रकार की हरकतें करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, आप चाहे तो यूट्यूब पे इसके बारे में देख भी सकते हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में हम बताते हैं किया क्या गया था
0: जी।
1: कुछ छोटे बच्चों को, करीब 3 से 5 साल के बच्चों को एक रूम में रखा गया था जो कि एक ऑब्जर्वेशन के अंडर था। वहां पर देखा कि वहां पे टॉयज रखे हैं एंड हर कोई बच्चा टॉय से खेल रहा है
0: जी।
1: उसके बाद एक एडल्ट उस रूम में आते हैं और वो एक डॉल को बहुत ज्यादा मारते हैं और वो मार के चले जाते हैं। सब बच्चों ने ऑब्जर्व किया होता है। उसके बाद उस एडल्ट के चले जाने के बाद वही बच्चे उस डॉल को, जिससे वो खेल रहे थे, प्यार कर रहे थे, उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझा गया था कि कैसे छोटे बच्चे मॉडलिंग सीखते हैं। इसको बोलते हैं मॉडलिंग, यानी कि जैसा हमने बड़ों को करते हुए देखा वैसा ही हम खुद भी करने लग जाए। और ये अपने आप बहुत ही स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से होती है। देखिए, छोटे से 3 से 5 साल के बच्चों को ये बताने की या समझाने की आवश्यकता नहीं होती है कि तुम्हें ये करना है। उन्होंने अपने आप ऑब्जर्व किया, वो बिहेवियर को लर्न किया और उसको एग्जीक्यूट करने लग गए। तो इसी प्रकार से यही कहने का अर्थ है कि अगर हमारे वातावरण में ऐसे बड़े लोग हैं, तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे वातावरण में ऐसे दादा दादी हैं जो अपने ही बेटे और बहू को गाली देके संबोधित करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर हाथ उठाता है और उनके पास बच्चे हैं और बच्चा ऐसा देख रहे हैं, इनफैक्ट इतना ही नहीं जबकि टीचर्स भी बच्चों पर हाथ उठाते तब भी बच्चे देख रहे होते हैं। तो इसीलिए ही आज के समय पे जो ये बनाया गया है रूल की हाथ नहीं उठाना है, उसके पीछे बहुत गहरा कारण है जो अधिकांश लोग नहीं समझते और कहते अरे हमारे जमाने पे तो चप्पल से मारा जाता था
0: जी।
1: तो इट्स लाइक दैट, इसका हर चीज के पीछे एक कारण होता है, उस कारण को समझना और उसका उसकी क्या महत्वता है उसको जानना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो देखिए, इसी प्रकार से हमारे सोशल एनवायरमेंट में जैसे लोग हैं, हम बच्चा वैसा ही चीजों को सीखने लगेगा। यहाँ तक कि अगर आज के समय की बात की जाए रुचिका, तो आप देख ही रहे होंगे कि या तो फैमिलीज में दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो बच्चे जो है वो हेल्प के थ्रू पल बढ़ रहे हैं या दादा दादी के साथ पल बढ़ रहे हैं। अब दादा दादी की अगर भाषा ऐसी है तो वो वैसी ही चीजों को ग्रास्प करने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, जब बच्चे को प्राइमरी केयर गिवर्स यानी कि मम्मा और पापा, जब मम्मा पापा से उनको वो अटेंशन, वो प्यार नहीं मिलता है, तो उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो नई परेशानियों को जन्म देने लग जाती हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको ADHD, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं,

0: अटेंशन दिया ही नहीं जिस प्रकार का अटेंशन आपका बच्चा डिजर्व करता था, जिसके कारण वश उनके अंदर इस प्रकार की हाइपर एक्टिविटी डेवलप हो गई है जहां पर वो अटेंशन चाहते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि अटेंशन डेफिसिट यानी कि उनका कंसंट्रेशन, फोकस या अटेंशन कम हो जाता है। तो आपको तब कंसर्न आता है कि अरे इसके तो मार्क्स कम आए हैं, या पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर ने कंप्लेन करी है कि ये फोकस नहीं कर पाता, ये शांति से बैठ नहीं पा रहा है। तो अब बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर वो कंपनसेटरी बिहेवियर उत्पन्न हो रहा है जहाँ पर अब पेरेंट्स को ध्यान देना ही पड़ेगा। तो हमें लगता है कि पेरेंट्स अगर स्टार्टिंग से ही ध्यान दें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो बच्चे के जीवन में आने से रोक सकते हैं। पेरेंट्स का इसीलिए बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर पेरेंट्स एक राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाए अपने बच्चों के लिए, तो हमारा तो आग्रह यही है कि आप बच्चे ना ही करें। अफसोस की बात है रुचिका कि भारत जैसे देश में जहाँ पर हर एक इमोशन को, हर एक रिश्ते को बहुत ही डिवाइन रूप से देखा जाता है
1: जी,
0: पूजा करी जाती है, लेकिन यही वो देश है जहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा आबादी है तो क्राइम रेट्स भी उतने ही ज़्यादा
1: बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल।
0: अब सोचिए कि इतनी आबादी जो लोग बढ़ा रहे हैं उसका क्या अर्थ है कि आप अनअवेयरनेस में रह कर आबादी बढ़ा रहे हो, आप अनअवेयरनेस में रह कर पेरेंट्स बन रहे हो, बच्चों को पैदा कर रहे हो, और फिर उनको आप सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन, सही वातावरण नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, और उसके बाद जब बच्चा हावी हो जाएगा तब आपको लगेगा हम क्या करें। तो इसलिए जितने भी न्यू कपल्स हैं आज की जनरेशन में, हम सबसे यही गुजारिश है कि आप सही एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिएगा पेरेंट्स बनने का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: बिल्कुल। तो मैम के कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमें जागरूकता के साथ आगे बढ़ना है, बिना जब आधा अधूरा ज्ञान जब हम लेते हैं ना तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होता ही है।
0: Definitely.
1: और वो परेशानियां ही खड़ी करता है। तो परेशानियों की तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं जो खास करके हमें प्रभावित करती हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो उस तरह से हमें इन बातों का ध्यान देना है, और मैम बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं कि किस तरह से हमें ध्यान देना है और जागरूक खुद को करना है। तो मैम इसके बारे में थोड़ा और हमारे दोस्तों को बताइए ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से जागरूक कर सके।
0: बिल्कुल। देखिए, जब पेरेंट्स सेपरेशन या डिवोर्स या डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज, इस प्रकार के वातावरण क्रिएट कर देते हैं फॉर देयर चिल्ड्रन, तब बच्चे के हार्मोन्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, सेरोटोनिन ड्रॉप हो चुका होता है, बच्चे के अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी होती जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, बच्चे के अंदर ऑक्सीटोसिन बहुत कम हो जाता है, यहाँ तक कि बच्चा खुद से ही प्यार नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे को लगता है पेरेंट्स का ध्यान तो लड़ने में ही है, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं है, और इसका मतलब आई एम नॉट वर्दी इनफ टू पे अटेंशन टू, आई एम नॉट लवेबल, बच्चे को ऐसा ही लगता रहता है, इसीलिए बच्चे की जो सेल्फ वर्थ है वो उसकी कम होने लगती है। अब देखिए, ऐसे में उनके ऊपर हार्मोनल इम्बैलेंस तो होंगे ही होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो सकते हैं, तो ऐसे में किसी बच्चे में इम्पैक्ट आ सकता है कि उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है, उसके अंदर कामनेस या लव वाली भावना कम हो गई है लेकिन गुस्सा बढ़ चुका है, बच्चे के अंदर अपने आप को लेके इतने डाउट्स आ चुके हैं कि वो एकदम डिप्रेशन जैसी स्थिति में जा चुका है, जिसकी वजह से ही बच्चे के अंदर फिर एक समय के बाद सुसाइडल टेंडेंसीज और या फिर सेल्फ हार्म बिहेवियर्स देखे जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं जो आगे चल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि बच्चे का एक प्रकार का क्रिमिनल माइंडसेट डेवलप होने लगता है, क्योंकि आज नहीं तो कल बच्चे के अंदर एक प्रकार का आक्रोश जरूर ही आएगा कि मैं अपने आप को हार्म क्यों कर रहा हूँ, अब मैं सामने वाले को हार्म करूंगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति की परिस्थिति ना एक समान नहीं होती है, आज अगर वो बच्चा खुद को डाउट कर रहा है तो कल को उसके अंदर ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हो सकता है जो कि बड़े होकर वो दूसरों को हार्म करने का प्रयास करे या दूसरों को डाउट करे कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ, सामने वाला ये है जिसमें गड़बड़ी है, तो मैं सामने वाले को क्वेश्चन करूंगा, उसको अटैक करूंगा, उसको परेशान करूंगा, अपने आप को नहीं। तो हमें इन सभी बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं
1: जी।
0: अगर कोई बच्चा एक पॉवर्टी वाले एनवायरमेंट में पल बढ़ रहा है तो वहां पर

0: लोगों का जो पेरेंट्स खुद है उनका खुद का एक जो मानसिक लेवल है वो उतना ज्यादा खुद ज्यादा डेवलप्ड हुआ नहीं होता है। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जिनका मानसिक लेवल बहुत डेवलप्ड हुआ हो या मॉरल वैल्यूज हो। तो वातावरण में जिस प्रकार के लोग जिस प्रकार की चीजें कर रहे होंगे वैसा ही फिर बच्चा बनता जाता
1: बनता
0: है।
1: जाता
0: उसके अंदर पढ़ाई या एजुकेशन के प्रति अगर एक्सपोजर नहीं है, दुनियादारी के प्रति एक्सपोजर नहीं है, तो उसकी मानसिकता वैसी ही बनती जाएगी। अगर इट्स लाइक वही बात है ना कि अगर आप एक क्रिमिनल के साथ ही पल बढ़ रहे हो तो आपका क्रिमिनल माइंडसेट ही डेवलप हो जाएगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ पल बढ़ रहे हो जहाँ पर लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, उनको छेड़ा जाता है, तो आप वही आदतों को ही पिक कर लेंगे।
1: जी
0: सो इट्स एज सिंपल एज दैट। कि इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन, क्योंकि उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो जाती है। कि एजुकेशन के आधार पे कई चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चे अपने जीवन में संवार सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये सारे ही फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट, गिवन कि आज के समय पे जो सोशल मीडिया का जो एरा है, इट्स लाइक चेरी ऑन द केक वाली बात, बिकॉज इन अ रॉन्ग वे ऑब्वियसली, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से कोई बाउंड्री नहीं बची
1: नहीं है
0: है,
1: बिल्कुल।
0: कोई सीमा ही नहीं है, हर चीज लिमिटलेस हो चुकी है, इनफिनाइट हो चुकी है। एंड इट्स लाइक कुछ भी अगर पेरिस में हो रहा है तो वो चीज आप यहाँ पर बैठ के देख सकते हो, और
1: जी
0: फोन हर घर में है। डजेंट मैटर आप पॉवर्टी लाइन के बिलो हो या नहीं, पर
1: नहीं
0: फोन
1: बिल्कुल
0: है सबके यहाँ
1: जरूरी
0: पे,
1: है।
0: सोशल मीडिया है सबके यहाँ पे, और जो एक एक्सपोजर मिल रहा है उस इंफॉर्मेशन से थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। सिर्फ ब्रेन के डेवलपमेंट पर ही नहीं, बट ऑल्सो रेदर हम किस प्रकार की आदतें पिक कर रहे हैं
1: जी
0: और हम किस तरह की चीजों के प्रति और ज्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ड्रग्स इज अनदर। अब सोचिए जब बच्चा डेवलपमेंटल स्टेज पर ही है
1: जी
0: और वो ड्रग्स लेना शुरू कर दे तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा ही कितना। वो एक एडिक्शन में बच्चा अगर जा चुका है ऑलरेडी, तो वो अपने आप को उससे बाहर निकालने में कितना ज्यादा असहाय महसूस करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन ही उसका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ
1: नहीं
0: था।
1: हुआ
0: और
1: बिल्कुल।
0: अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि स्कूल इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर योर किड्स, सॉरी बट दैट्स नॉट ट्रू। स्कूल जितनी अपॉर्चुनिटीज बच्चे के ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करता है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बच्चे के हार्म के लिए भी प्रोवाइड करता है। तो आपको बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी कि आप किस प्रकार के स्कूल में बच्चे का दाखिला करा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और अगर बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहां पर उनको अब्यूज किया जा रहा है, यहाँ वहां पर उनकी रैगिंग ली जा रही है, उनको बुली किया जा रहा है, तो आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है अपने बच्चे को संभालने का, उसका साथ देने का, और उसको अकेला ना छोड़ने का। तो ये सभी चीजों का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है रुचिका।
1: जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और इससे हमें एक ही बात समझ में आती है और एक ही बात निकल कर आ रही है इन सभी बातों से कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैम ने कहा, अगर हम ड्रग्स की बात करें, अगर हम रैगिंग की बात करें, अगर हम बच्चों के एक तरह से किस तरह से किस माहौल में वो बड़े हो रहे हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, उनके लाइफस्टाइल को प्रभावित कर रही है। तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है पेरेंट्स को भी। बच्चों को तभी समझ में आएगा कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है जब तक पेरेंट्स उन्हें समय देंगे, क्योंकि पेरेंट्स का समय बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, भले ही आप कितने भी बिजी हैं। क्योंकि आजकल हम सभी जानते हैं कि मदर फादर दोनों का वर्किंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले जो है थोड़ा सा सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजना है तो उसके लिए थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि दोनों हाथ बैलेंस करके चले तो बढ़िया रहता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हम उस चक्कर में यानी कि पैसों के पीछे भागते भागते बच्चों के भविष्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम फिर से वापिस आते हैं दोस्तों आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: प्यारे से गीत के बाद आप सबका स्वागत है मन संवाद एक प्रयास मन की ओर में और आप बात कर रहे हैं रुचिका और प्रियशी के साथ।
1: जी दोस्तों, इस बहुत ही खास बातचीत के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं और मैम बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप और गहराई से आप सभी को इस जानकारी को बता रहे हैं ताकि आप अपने आप को अवेयर कर सके। तो आप कितना खुद को अवेयर करते हैं ये तो आप पर डिपेंड करता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। तो इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और सारी बातें एक तरफ होती हैं लेकिन उससे बचाव एक तरफ होता है, मेन बात तो वही होती है। तो मैम अब ये बात कर लेते हैं, हमारे दोस्त भी इस बात को समझ लेंगे, जान लेंगे जागरूकता के साथ साथ, कि अगर बच्चे छोटी एज है चाहे किसी भी एज में अगर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका माइंडसेट उस तरफ जा रहा है, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है?
0: देखिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को अटेंशन दें, ऑब्जर्व करें, उन्हें समझने का प्रयास करें। जब ये तीन चीजें नहीं होती हैं तब बच्चा क्राइम वाले डायरेक्शन में बेसिकली बढ़ता जाता है। और इन सब के अर्ली साइंस होते हैं। अर्ली साइंस क्या क्या होते हैं आज हम आपको ये बताएंगे, जिससे आप ये समझ सके कि क्या हमारे बच्चे में भी ऐसा कुछ है, सो दैट आपको समझ में आ सके कि ये एक अर्ली स्टेज हो सकती है और इसका प्रिवेंशन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वो अर्ली साइंस बिहेवियर में कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। देखिए, थॉट, इमोशंस, बिहेवियर, ये तीन चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थॉट लेवल पर अगर आपको लगे कि बच्चा आए और बच्चा आपको इस प्रकार से बात करते हुए बोल दे कि अरे कोई बात नहीं तो मार दो, या बच्चा कभी होता है कि गुस्से में आके बोल देता है मैं थप्पड़ मार दूंगा, या बच्चा ऐसे सोचे, बच्चा रो रहा है, आप उसके पास गए और आपने उससे पूछा क्या हो गया, तो बच्चा बोले कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं, तो आप इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, बातें हैं, उनको आप लाइटली बिल्कुल ना लें, मजाक में बिल्कुल ना लें, हास्य वो उसका बिल्कुल मत बनाए, बिकॉज ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि बच्चे के वो जो इमोशंस हैं, जो भाव हैं, उनको प्रोसेस कैसे करना है, सही है गलत है, उनको किस प्रकार से प्रोसेस करके किस तरीके से रिलीज करना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप गैदरिंग्स में एम्पथी या कंपैशन या शेयरिंग, काइंडनेस नहीं दिखा पाते हैं, वो वेलकमिंग नहीं होते, उनके अंदर जेलेसी की भावना ज्यादा होती है, वो अपनी चीजों के प्रति पोजेसिव ज्यादा होते हैं। अगर कोई दोस्त उनका या प्ले ग्रुप में है और कोई बच्चा आया और बच्चे ने उसका टॉय ले लिया तो उसने उठा के थप्पड़ी मार दिया या बहुत ज्यादा रोया और उसने अपना टॉय ही तोड़ दिया, तो इस प्रकार के बिहेवियर्स जो हैं वो भी कंसर्निंग होते हैं। अगर आप ऐसा देखें कि बच्चा जो है, लेट्स से आपका 5-6 साल का हो गया है, वो बाहर जाता है प्लेग्राउंड में और बच्चों के साथ ग्रुप में खेलता है, पर उसके वहां पे अचानक से ना फाइट ज्यादा हो जाती है, और किसी की शायद नहीं होती हो उतनी, लेकिन आपके बच्चे की ज्यादा फाइट्स हो जाती हैं, वो राइट इंडिकेशन नहीं है। वो मतलब बच्चे को कुछ परेशान कर रहा है, बच्चे को नहीं पता है कि अगर रिजेक्शन मिल रही है या गेम खेलते खेलते वो फेल हो गए तो उस फेलियर को कैसे लेना है, एक्सेप्ट कैसे करना है। अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे अभी तो आगे चल के उनका जो एक सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो अगर गाली का प्रयोग कर रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, मम्मी पर हाथ उठा देता है, बच्चे ने एक बार ऐसा किया हो और आपने उसको समझाया हो, उसको समझ में आ गया हो, तो वो बात अलग होती है, पर बच्चा ऐसा बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है और आपके समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तो वो राइट इंडिकेशन नहीं है। बच्चा जानवरों को मार देता है, कीड़े मकौड़ों को मार देता है, गिलहरी दिखी मार दिया, कुत्ता दिखा मार दिया, किक मार दी या पत्थर फेंक के मार दिया, ये सारे साइंस अच्छे नहीं है। बच्चा अगर अपनी उम्र से ज्यादा उम्र से बड़ी बातें करने लगे इन अ वे जो थ्रेटनिंग हो टू द सर्वाइवल ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स, जैसे एक केस आया था, वो बच्चा ऐसी बातें करता था, लाइक बच्चा सिर्फ 7 साल का है और बच्चा ऐसी बात करता है कि अरे बुढ़ाऊ तुम क्या करोगे, रहने दो, ये सारा तो वैसे ही मेरा है, मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही होनी है ना। तो बच्चे के ऐसे लव्स हैं अपने दादा के लिए, बच्चा अपनी माँ को मारता है, छत पे जाके खड़े होके छोटे छोटे कंकड़ लोगों पर फेंकता है, कुत्ते को मार देता है और हंसता है। ये सारे साइंस हैं कि बच्चे के अंदर कंपैशन नहीं है, बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है टूवर्ड्स एल्डर्स। और ये साइंस बहुत अलार्मिंग है, ये अच्छे साइंस नहीं है। बच्चे को गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है। बच्चे अपने से बड़ी जो लड़कियां हैं उनको प्रपोज करता रहेगा, और अगर कोई मना करेगा तो उस पर गुस्सा करेगा, उस पर भी हाथ उठा देगा। है बच्चा ही, और लोग क्या सोचेंगे, तो छोटा है ना भी बच्चा है, इसको अकल नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उसे अकल नहीं है, उसका ब्रेन डेवलपमेंटल स्टेज में जरूर है, लेकिन जिस प्रकार के वो बिहेवियर शो कर रहा है वो चिंताजनक है। देखिए, ये हम लोग सिर्फ छोटे बच्चों की जैसे अभी बात कर रहे हैं या यंग एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। आप कितने भी क्रिमिनल्स देख लीजिए, वो जितने भी बड़ी उम्र के हों, उन सब की अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे या आप उनका बचपना देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उनके बचपन में ही उन्होंने साइंस शो करनी स्टार्ट कर दिए थे। तो बच्चा अगर स्कूल में रेस्टिगेट हो रहा है, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियां चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, ये सारे ही चिंताजनक बातें हैं। तो आपको इन सब का ख्याल रखना होगा। बच्चे तो आज के समय पे क्योंकि फोन है तो उम्र से पहले ही
1: बिल्कुल सीख ले रहे हैं,
0: सब चीजें देखते हैं, है ना, चाहे वो पोर्न देख रहे हो या कुछ और। तो इट्स समथिंग विच इज वेरी कंसर्निंग। तो माता पिता को खास तौर पे बड़ा ही ख्याल रखना है। अगर वो अर्ली साइंस में ही देख लेते हैं कि ये चिंताजनक चीजें हैं या बच्चा इमोशनली अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको सिखाना पड़ेगा
1: जी,
0: बताना पड़ेगा कि ये इमोशन को जब आप महसूस करो तो इस इमोशन को क्या कहते हैं, आप क्या कर सकते हो, कूल डाउन कैसे कर सकते हो, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट वे क्या है। इस प्रकार का जो एक लर्निंग है वो देना बहुत ज्यादा आवश्यक है
1: जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो हमें पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम बच्चा समझ के उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही नजरअंदाजगी हमारे लिए फिर प्रॉब्लम बन जाती है, खास करके बच्चों की जिंदगी के लिए। तो इन्हीं साइंस को हमें ध्यान में रखना है और बच्चों को अच्छे से गाइड करना है, अच्छे से उन्हें समझाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चा समझ के उनकी गलतियों पे पर्दा नहीं डालना,
0: डेफिनेटली
1: उन्हें बढ़ावा नहीं देना है कि कल को वो किसी और बड़ी बात को अंजाम दे दें और फिर बाद में पछतावा हो तो उसका क्या फायदा। तो समय रहते चीजों को समझिए और उन्हें उन साइंस को पहचानिए और बच्चे की जिंदगी को संवारिए। तो दोस्तों, बहुत ही खास जानकारी आप सभी के साथ साझा की है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस बात को लेकर जागरूक होंगे और अपने अपनों को भी जागरूक करेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई जवाब हमारे इन बातों से कि आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, ये भी ऐड होना चाहिए, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा
0: 9354134057। एक बार फिर से रिपीट करेंगे 9354134057।
1: जी दोस्तों, तो नंबर आप सभी को बता दिया है, और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस स्टेज में जा चुका है और जरूरत है उन्हें एक तरह से मोटिवेशन की, काउंसलिंग की, तो उसमें झिझकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, लोगों की बातें भी नहीं है। तो आप हमारे सेंटर आ सकते हैं, बच्चों को बिना किसी डर के कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आप उनका काउंसलिंग सेशन करा सकते हैं। तो हमारा पता रहेगा
0: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला, अपोजिट मांझी पुल, धर्मशाला।
1: जी दोस्तों, तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सवालों के साथ, जवाब के भी साथ, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी बातें जिनका जवाब आपके पास हो वो भी आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं, और कुछ ऐसे सवाल जिनके बारे में बात होना जरूरी है तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब समय हो गया है दोस्तों आप सभी से अलविदा लेने का। आज का ये बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी ने एंजॉय किया, अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
0: प्रेयसी के साथ
1: जी। तो दोस्तों, दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जाँच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं,
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे,

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनदे ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।
1: डायमंड

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
1: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
2: देखने तो देती नहीं,
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे।

0: नमस्ते नमस्कार 91.2 MHz पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शतो कार्यक्रम माटी दी महक लेकरी तुहां तक कहां पहुंचियो न करे तुहां सारे भी अपने अपने जिड़ा रेडियो सेटन से ऑन करी लियोने न या मोबाइल फोन च सुना दे न तो मोबाइल फोन च जिड़े से शुरू करी तौने तो शुरुआत जड़े से अहाँ करी थी है कने तो हाँ भी जड़े से कार्यक्रम दे सफर कने जुड़िया तो शुरू सुख कने दुख दी अहाँ गल करिए अचानक एक जड़ा मोड़ है से उन्द है सुख कने दुख दी जड़ा मुलाकात है से एक दुए कने हो जाती है दुख कने जड़ा सुख है से हमेशा एक दुए बोलते न कि तू बड़ा भाग्यशाली है सुख जड़ा है सभी बोलता है कि तुम्हें बड़ा भाग्यशाली है कने दुख जड़ा है सभी बोलता है कि तुम्हें बड़ा भाग्यशाली है अगर सुख अहाँ च आई आता है तो अहाँ कई बार होंगे ना कि सुख दे चलते अहाँ इतना ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाते कि अहाँ जो खुद का ही खुद जो पता नहीं होंदा कने चलो दुख होंदा तलू अहाँ इतने नाराज होंगे या अहाँ भगवान जो कोशना जड़े से शुरू हो जाते कि नहीं ये दुख जड़न से सारे ही मेरे ऊपर ही हैं या मुझे ही दिते सारे दुख तो शो तो सुख दुख जड़े से हमेशा जिंदगी चले रहते कने सुख जड़े से हमेशा मुस्कुराई करी बोलता है कि मैं भाग्यशाली है कि जड़े कि मैं हमेशा जड़े से सुखे च रहा कने मेरा जड़ा जीवन है से हमेशा सुख कने निकलता तो श्रोताओं के ऊपर अहाँ और गल बात करनी है पर अहाँ दे जेड़ा पहले श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: नमस्ते जी नमस्ते
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: बड़ी जी
0: जी क्या हाल चाल है चैतड़ू वाले दी कितना ज्यादा जेड़े से होया या नुकसान वगैरह तो नहीं होया कुछ
1: नहीं जी
0: जी जी ता मंगल जी और नोईता जी चैतड़ुए दी
1: बस नोईता जी ये हुण सुत्ते हुण ना उठते हुण हुण उठे हुण ना उठते हुण अगर पिंचे तैयारियां
0: जी जी
1: जी
0: अच्छा जगराते दी तैयारियां आज जेड़े से रौनक कुथु लगानी तो हां
1: आज पुराना कांगड़ा
0: जी अच्छा पुराना कांगड़े
1: हां जी
0: जी चलो अच्छी गल है ना जी
1: जी
0: आज कुन दिया गीत जड़े से तुहां सुनना पसंद करके
1: गाना नहीं दिया कालिया कागा मिठा मिठा बोल
0: जी कालिया कागा मिठा मिठा बोल आज मेरी मैया जी ए फरमाइश तुहां तक पहुंचान दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ताशो तो सुख कने दुख दी जेड़ा गल है से अहाँ लगाई थी अहाँ ये बोलिया कि अचानक जड़े से सुख कने दुख दी मुलाकात जड़े से आपस च हो जाती है कने दुख जड़े से सुख जो ये बोलता है कि तू जड़े से बड़े भाग्यशाली है क्योंकि तू जड़ा भी जितने भी लोग हैं तिना जो जड़ा हसाने दी कोशिश है या हर कोई यही चाहता कि अहाँ सुख च जड़े से रहन हर कोई ये नहीं चाहता कि अहाँ दे जीवन च दुख होवे पर दुखों का पहाड़ जड़े से कालू आ जाता से कुसी जो समझ नहीं आता है पर सुख जड़े से मुस्कुराई करी बोलता है कि मैं भाग्यशाली नहीं है तू जड़े से भाग्यशाली है दुख जालू दुख होंदा है तो तालू समझ होंदा है अपने दा प्यार अपने दा जेड़ा एहसास तो श्रोताओं सुख कने दुख जेड़े से जिंदगी च हमेशा चले रहंदा अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर देन गल बात हेलो
2: नमस्ते
0: ਜ਼ਫੀ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ
2: ਮੈਂ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਬੋਲਾ ਕਰੰਟ ਜੀ ਸਿੱਧਵਾੜੀ ਤੇ ਮੈਂ
0: ਜੀ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਸਿੱਧਵਾੜੀ ਤੇ ਨ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇ ਤੁਹਾਂ
2: ਉੱਠਨੀ ਆ ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਮੈਟੇ ਹੋ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
2: ਨਹੀਂ
0: ਜੀ ਨੋਈ ਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧਵਾੜੀ ਦੀ
2: ਕਰੀਏ ਅੱਜ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਘਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਜੀ ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਕਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਲੂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨ ਸਭੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀ ਕਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਸੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ
2: ਧੂੜੂ ਨੱਚਿਆ
0: ਜੀ ਧੂੜੂ ਨੱਚਿਆ ਜੱਟਾ ਵੋ ਖਿਲਾਰੀ ਕੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਇਹ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਕਦੇ ਅਲੱਗ

सफर जहाँ कन्नै जुड़ी सकते। जुड़ने वास्ते जेड़ा हाँ दा नंबर है, पहले नंबर तुहां तक जरूर पहुँचाई दे, नंबर है 7018117091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। अपनी गलबात जो इतने रोक देना क्योंकि शुरुआत करी लैंदे पहले।

माटी दी मेह कार्यक्रम तुह सारे सुना दिन अपनी रेडियो तो शशि कहने त्रोतो चेहरे ने पर जड़ा व्यवहार है ना से खूबसूरत होना चाहिए। सुंदरता तो सिर्फ जड़ा अखीं दा जड़ा भ्रम है, असली खूबसूरती तो इंसान दी जड़ा व्यवहार है, इंसान दा जड़ा व्यवहार है तिस च छुपी होवे। चेहरे दी चमक जड़े से कुछ समय बाद जड़े से फीकी पे जाती है, पर जड़ा हंदे मीठे शब्द हैं से हंदे सबसे ज़्यादा सच्चा जड़ा साथी है, अच्छा जड़ा व्यवहार है, या जिंदगी भर जड़ा दिलां च जगह जड़े से एक ही दूए वास्ते अहां रखदे न। अगर अहां अपना व्यवहार जड़े से अच्छा रखदे न कने अपने जड़ा संस्कार हैं से अच्छे रखदे न तो कुथी ना कुथी ये जड़ा चेहरे दी सुंदरता है ना से भी फीकी जड़े से जरूर पे आती है। कई बार होंदा ना कि अहां हमेशा चेहरे पीछे जड़े से भागदे न पर व्यक्ति अंदर उसकी जड़ा व्यवहार है या उसकी व्यवहार की जड़ा सुंदरता है से अहां बिल्कुल नहीं दिखते न, या उसकी संस्कार जड़ा न से किस प्रकार हैं, क्योंकि जिंदगी च संस्कार जड़ा से बड़े मायने रखते न। अहां दा जड़ा व्यवहार है से किस प्रकार है से बड़ा मायने अहां दे जीवन च रखता है। तो शो तो सेहत दी जड़ा गलबात है से अहां हमेशा करते न, अच्छी सेहत दे कुछ न कुछ जड़ा टिप्स हैं से तुहां तक जरूर पहुँचाने न, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि अहां दी जड़ा सेहत है ना से बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे। हाई ब्लड प्रेशर दी अहां गल करिए या ब्लड शुगर दी गल करिए, अजकने समय च या अजकने दौर दी अहां गल करिए ता अहां दा जिहड़ा लाइफ स्टाइल है से बिल्कुल जिहड़ा अहां दी कोई भी समस्या है से सिर्फ आम जिहड़ा है से अहां दे स्वास्थ्य वास्ते होई है, क्योंकि खान पान जिहड़ा है से अहां दा बिल्कुल गलत है, अहां दियां जिहड़ा आदतें से बिल्कुल गलत हैं, तनाव जड़े से अहां कुथे ना कुथे तनाव ते भी ग्रस्त हैं। अगर अहां नींद दी गल करिए तो तिस ते भी अहां कुथे ना कुथे सभी अहां दे जीवन पर प्रभाव जड़े से जरूर पांदा है। इसी कन्ने अहां दा जड़ा खान पान है सभी अहां जो कुथे ना कुथे अहां दी बीमारियां दी ओर जड़े से धकेला दा। तो शो तो अपना जड़ा ख्याल है से रखना ज़्यादा जरूरी है। अपने दिने दी शुरुआत अहां किस प्रकार करदे न, दिने दी शुरुआत अगर अहां गुनगुन गुने गुने जड़ा पानी होंदा अगर थोड़ा गुनगुना है तिसी कन्ने करदे न तो अहां दा जड़ा पूरा दिन है से अच्छे ने जांदा है कने अहां दी जड़ा सेहत है से बिल्कुल सही रहंदी है। संतुलित नाश्ता जड़ा से अहां जो करना चाहिदा, सही जड़ा फल हैं तिना दा चुनाव भी जरूर करना चाहिदा, सही फल अहां खांदे न तो अहां दी जड़ा सेहत है से बिल्कुल क्या रहंदी है फिट एंड फाइन। इसी कन्ने थोड़ा दे अग्गे बढ़दे न कन्ने अगली जड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचांदे न।

दर्शो तो तुम्हारी इस भजन दा जिड़ा इंजॉय है से जरूर ले देना। कालिया काका मीठा मीठा बोल आज मेरी मैया ने आना है तो थोड़ा दिया ध्यान तुहां भी जे पग ले थोड़ा दिया जिड़ा मीठा मीठा बोलना जिड़े से शुरू करा। इस गीत की फरमाइश अह जो आई वे चैतड़ू ते कने तिना दा नाम वे मंगल जी तिना तक कहाँ फरमाइश पहुँचा।

0: श्रोता तो हाँ जरूर इस भजन का जड़ा इंजॉय है से ले आने कने इस भजन जो जरूर ध्यान कने सुने होने ये भजन जड़ा से कुथी ना कुथी यहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते न कने हाँ जरूर इना भजना ते जड़ा सीख है से लेंदे न तो श्रोताओं सेहत दी यहाँ जड़ा गल करा देन हर कोई चाहता है कि यहाँ की सेहत क्या हो थोड़ा दिया सोचा बिचारा वैसे तो सोच विचार तो हाँ हमेशा करते हैं पर कुथी ना कुथी अपनी सेहत जो जरूर नज़रअंदाज जड़े से करना शुरू हो जाते हैं। तो श्रोताओं गल अहां कीती थी कि दिने दी शुरुआत अहां किस प्रकार जड़े से करी सकते वैसे तो अजकने दूर की अहां गल करिए दिने दी शुरुआत अहां किस प्रकार कर दे जरा करी सोची करी दिखा अपना जड़ा माइंड है उस जो थोड़ा दिया घुमा कि अहाँ दिने की शुरुआत किस प्रकार करते हैं। पहले तो अहाँ जो मोबाइल फोन चाहिए होंगे अहाँ के आस पास अगर मोबाइल फोन ना होया तो अहाँ तो सोचते हैं कि दिने की शुरुआत जड़े से थोड़ी बोरिंग दी हो जाती है पर दिने की शुरुआत अगर तो हाँ गुनगुने पानी कने करते हैं कने सुबह उठी करी अपनी जड़ा दिने की शुरुआत गुनगुने पानी कने एक गिलास जड़े से पी करी कर देना तो तुहंदी जड़ा सेहत है अपनी सेहत के हिसाब ने तुहां तिस गुनगुने पानी च जड़े से नींबू का जड़ा रस है तिदिया कुछ बूंदा जड़ा न मिलाई करी भी तुहां तिस जो पी सकते कने अपनी सेहत का जड़ा ख्याल है से जरूर रखी सकते। इसी कने अगले जड़ा श्रोता न तिना कने कर देना गल बात। हेलो
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुम्हारा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: हां जी बढ़िया मैंने गाना सुना पहले कारा कुकू कु एक पंछी कुत्ते कुत्ते बोलदा
0: जी कुंडिया गाना सुनना है जी तो हां
1: आखिर बारी एक पंछी कुत्ते कुत्ते बोलदा
0: जी कने अपना नाम भी दसी दिया कने कोह जगह दे रहने आए
1: मेरा नाम
0: जी तशो तो जरूर ये जड़ा फरमाइश है से यहाँ तक पहुँची है ये भी यहाँ तुहां तक पहुँचानी है कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहां कने जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते नंबर तुहां तक जरूर अहां पहुँचा देन अगले जड़ा श्रोता न पहले तिना कने कर देन गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: सुशी मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी।
2: ठीक ठाक है
0: मैं जी ठीक ठाक है जी।
2: और मैडम जी
0: जी तो हाँ सुना नई ताजी जी तू हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हाँ ना के
2: मैं मैडम जी दरवाने से पुराने श्रोता तो आड़े
0: जी राकेश जी।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम जी।
0: राकेश जी क्या काम कार छेड़े तो
2: हाँ बस काम है मैडम जी थोड़ा लग गया ए थोड़ा ए, काम को मतलब कर रहा हूं करे काम ना मुकदे ना कदी भी
0: जी घरे दे काम तो नहीं मुकदे पर
2: मुकदे ने आंदे
0: जी कल जेड़ा शामी टाइम मिलन होया था बड़ा साद होया
2: हां मैडम जी सर हां तो ना नौकरी वाले ता है तो ढेले ना लंदे रहंदे ना
0: जी जी जी
2: अब लोग पर बैठे रे मैडम जी बड़े भारी बाहर निकली ये फलाना जे विश्वास भगवान पर होंगे ना मैडम जी जे तिनी करना सा करना करना ना हाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते
0: जी चलो पर अपनी सेफ्टी करना भी जरूरी है
2: मतलब अपनी सेफ्टी होनी ना मैडम जी
0: जी
2: हाँ जी हाँ जी आप खत्म है मैडम जी 5.7 टेबल गति तो है
0: जी बड़ा ज्यादा जड़े से
2: हाँ जी हाँ जी आप मैडम जी लोग तो फोड़ रहा सुते नहीं
0: जी
2: वो रहा सुते नहीं मैडम जी लोग ता
0: जी जी तो जिस हिसाब ने होया उस हिसाब ने तो फिर अंदर भी
2: हां डरे ना मैं तो डोल मैडम जी 10:05 पर होया ना 11 बजे सोई है मैं अंदर के जी ओड़ा मना होई आना
0: जी जी 11 बजे फ्री थे होया था ना जी
2: हां झड़की झड़का फिर मैडम जी
0: 11 बजे जड़ा से थोड़ा हल्का ही होया
2: हल्का तो अगर 10:05 पर होया मैडम जी बड़ा भारी बड़ा होया ना
0: है तो ठीक ठाक ही
2: होया हां जी हां जी मैडम जी अब दस थाली आंदी ना मने च
0: जी पर इसी कन्ने मैं ए भी मैसेज देना चांदी कि प्रकृति दा जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा हां जो सबक मिला
2: बिल्कुल मैडम जी हां हम ये गलाना भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ
0: जी कने अपना प्रकृति दा जेड़ा ख्याल है पेड़ पौधे न तिना दा जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा
2: क्योंकि मैडम जी लोकां दी खा अग लाई थी पहाड़ च कोई जीव जंतु जड़ा देखो कुछ सब सोच नहीं लोकां
0: जी जी
2: ये बच्चों ने कुछ बीच पकोवा देखो कुछ को कुछ मैडम जी अपने अपने वास्ते ना का कोई वास्ते आग लगाए देनी जंगल च बच्चे फगोदे कोई क्या मैडम सोच नहीं लोगों का भगवान इतना करा मैडम जी
0: जी ता इस ते बेहतर है कि अगर हां अच्छा करना शुरू करिंदे ना तहां
2: के जी मैडम जी
0: अच्छा होंदा है ना जी
2: हां जी हां जी मैडम जी जी
0: प्यार भावना जिड़े से बिल्कुल खत्म होई है ना जी
2: बिल्कुल खत्म मैडम जी कि दुगो ने बस गलाए राज ही नहीं अपने जी खुश अपने जी खुश ना कुछ कुछ कोई ने कुछ ना मतलब नहीं क्या पता नहीं क्या लोग क्या होई है ना
0: जी
2: हां जी मैडम
0: राकेश जी आज तुहा कुंदिया गीत
2: ना तुहाडा मनपसंद गाना सुनना
0: अगले जेड़ा श्रोता ने तिना कन्ने भी कर देना गल बात हेलो
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: हां जी बढ़िया
0: जी तो
1: सुना
0: जी तो कुतु ते बोला दे कने तो हुंदा ना के जी
1: मैं ना रिंपी मछली बारी तो बोले
0: जी रिंपी जी सिद्धवाड़ी ते बोला दे
1: जी
0: जी ता रिंपी जी कुंडिया गीत सुनना पसंद करके
1: तल्ली तारा एक पंछी कुतु कुतु बोलदा
0: जी जरूर जी तो हुंदी जेड़ा फरमाइश है से तो हुं तक पहुंच
1: जी जरूर सुनांगे अपना
0: जी ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਦੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੰਨੇ ਇਸੇ ਕੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਾ ਕੰਨੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਛੇਗੀ ਤਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਭਜਨ ਕੰਨੇ ਸੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿੱਧਬਾੜੀ ਤੇ तो सारे भी इस भजन जो एंजॉय करा।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंचन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने फिर यहाँ वापिस जिड़ान से अपनी गलबात ऊपर आई हो न दर्शो तो सुख कने दुख की जिड़ा कहानी है से जरूर तुह तक पहुँचानी है। सुख जिड़े से कने दुख हमेशा हाँ जो कोई ना कोई सबक जिड़े से जरूर देख रही जानता है। एक बार जिड़े से अमीर आदमी जिड़े से संत ले जानता है कने से हमेशा उस महाराज जो पूछते है कि कोई ऐसी जिड़ा गल ऐसे मुझे दसा कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी च खुश रहे कने दुख होवे तो मैं जिड़े से अपनी जिंदगी च हमेशा खुश रहे। तो संत जिड़े से मुस्कुराई करी बोलता है कि अमीर आदमी जो एक कागज़ का जिड़ा टुकड़ा है से लिखी करी दिंदा है तिश लिखा होंगे जिड़ा समय है सभी बदली आना है कने क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं कर सकते हाँ कि कलू दी अह का समय खरा होना है या कलू दी समय जिड़ा से अह का बुरा होना है। कने संत ने यह भी बोलिया कि जालू अगर दुख होंगे तालू भी तो ये जिड़ा लिखी करी कागज़ जिड़ा मदद है से पढ़ना है कने जो हिम्मत जिड़े से जरूर मिलनी है कने पर जालू सुख तिजल होना है या तिजल सफलता होनी है तालू भी तो ये जिड़ा भी लिखी कर दिता है जिड़ा टुकड़े च लिखी कर दिता है तालू भी पढ़ना है। तो यदा मतलब ये है कि अहाँ अगर हमेशा सुख च अगर ज़्यादा घमंड कर देना तो हाँ जो घमंड ते बचने दा जिड़ा एक सरल उपाय जिड़े से मिलता है। तो यही है कि अगर अहाँ सुख है तभी अहाँ जो जिड़े से थोड़ा सबर करना चाहिए कने अगर दुख है तो दुख जो भी ऐसे मतलब इन्ना अहाँ जो समझना चाहिए कि थोड़ा बहुत जिंदगी दा जिड़ा सफर है ना क्योंकि जिंदगी च जिड़ा उतार चढ़ावन से हमेशा चले रहेंदे पर जिड़ा वक्त है से हमेशा गुजरता रहता चाहे अच्छा है चाहे बुरा है सह वक्त जिड़े से अहाँ जो जरूर कुछ ना कुछ सिखाई करी जाता है। सुख जिड़े से अहाँ जो ये सिखाई करी जाता है कि अपने जिड़ा ना से अहाँ कने हमेशा रहते हैं कने दुख जिड़े से अहाँ जो ये सिखाई करी जाता है कि अपने भी पराए जिड़े से हो जाते हैं। तो कुछ तुह जो जिड़े से समझ आया कि सुख दुख जिड़े से जिंदगी का रूल है समय के अनुसार सुख भी आंदा है दुख भी आंदा है। समय जिड़े से सबसे बड़ा एक महान ये है कि अहाँ ये नहीं बोली सकते समय जिड़े समय के अनुसार अहाँ नहीं चली सकते समय अहाँ जो अपने अनुसार जिड़े से चलांदा है पर समय के अनुसार चलना अहाँ वास्ते जरूरी है जलू अहाँ समय की कदर कर देन कने अगर समय की कदर अहाँ नहीं कर देन तो कुथी ना कुथी समय जिड़े से अहाँ जो बड़ी वड्डी जिड़ा सीख है से दे करी जांदा है। तो सेहत उपर अहाँ जिड़ा अपनी गलबात लगाई हुए तो हाँ सारे भी मेरी गलबात जिड़े से ध्यान ने सुना दे होने अपने जिड़ा आहार है तिच फाइबर जिड़े से अहाँ जो शामिल करना चाहिए था। अगर अजकने दौर की अहाँ गल करिए हर इंसान अंदर बीपी शुगर की जड़ा बीमारी है से हमेशा कोई ना कोई समस्या जड़े से अहाँ जो दिखने जो मिलती है या अहाँ ज़्यादा जड़े से नमक का सेवन जड़े से अहाँ जो कम करना चाहिए अगर तुहदा बीपी हाई है क्योंकि बीपी हाई जड़े से एकदम कुथी ना कुथी अहाँ के स्वास्थ्य पर जड़े से असर पाँदा है कने अहाँ की सेहत जो नुकसान जड़े से जरूर पहुँचाता है। कने सही फल जड़े से अहाँ गल की फल जड़ा न से अहाँ की सेहत वास्ते सबसे बेहतर हैं प्रकृति जड़ा अहाँ दे प्रकृतिक फल हैं तिना दा अगर अहाँ इस्तेमाल कर देन या तिना जो अहाँ लैन देन अमरूद की अहाँ गल करिए सेब की अहाँ गल कर नाशपति की कने पपीता संतरे जड़ा न से अहाँ दे स्वास्थ्य वास्ते बड़े लाभकारी हैं। अगर तुहां इन्हां दा सेवन कर देन तो कुथी ना कुथी ये शुगर की मात्रा जो बिल्कुल कम कर देन। तो अपना जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखा कने जिहड़ा नैचुरल सब्जियां नैचुरल फल हैं तिना दा भी सेवन जरूर करा पर
एक गल भी है ना सोचने वाली कि अहां दी जेड़ा प्रकृति है अहां दे जेड़ा पेड़ पौधे न तिना दी अहां छाँव भी लैंदे न तिना दा जेड़ा फल हैं सभी लैंदे न फिर तिना दी जेड़ा सब्जियां न सभी अहां लैंदे न फिर भी अहां प्रकृति जेड़ा से अहां जो कुछ नहीं बोलती है फिर भी अहां उसी प्रकृति दा जेड़ा नुकसान है कुथी ना कुथी करदे न तो सोच विचार करने की जरूरत है तो हाँ सोच विचार करा कने अपनी प्रकृति का ख्याल रखा अपना भी ख्याल जड़ा से जरूर रखा कने हाँ तुह तक पहुँचा दे न अगली फरमाइश।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये गीत इस गीत की फरमाइश हाँ जुआई हुए सिद्धबाड़ी थे कनतीना दा नावे रिंपी जी। रिंपी जी तक हाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया। तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने। इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तो तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। मौसम दी और अगर हाँ अपना जिहड़ा ध्यान है से लगांदे न तां हल्की बारिश कने भुचारे जिहड़ा पड़ने दी संभावना है से जरूर मौसम विभाग ने जताई हुई है। कने अधिकतम जिहड़ा तापमान है 19 डिग्री सेल्सियस रहने दी उम्मीद जिहड़े से है। कने जिहड़ा 25 डिग्री सेल्सियस जिहड़े से महसूस होई सकदा है। इसी कने न्यूनतम तापमान की गल करिए राती दे समय जिहड़े से 13 डिग्री सेल्सियस तक जिहड़े से तापमान गिरी सकदा है। कने हवा की गल करिए हवा की जिहड़ा गति है से 3 ते 5 मिलीमीटर घंटा जिहड़े से चलने की संभावना जिहड़े से दक्षिण पश्चिम दिशा ते दसी हुए। दर्शकों अपना भी ख्याल रखा मौसम के अनुसार अहां जिहड़ा समय समय अनुसार जिहड़े से मौसम की जानकारी भी तुहां तक पहुँचांदे न। कने इसी कने सेहत की जिहड़ा जुड़ी जानकारी है सभी तुहां तक पहुँचांदे न। आज अहां जिहड़ा गलबात करा दे न से करा दे न कि अच्छी सेहत वास्ते क्या क्या हाँ जिहड़ा उपाय या क्या अपना जिहड़ा ख्याल है से किस प्रकार रखी सकते। दर्शकों अगर अहां हमेशा ये चाहते न कि तुहां अंदर ब्लड जिहड़ा शुगर दी अहां गल करन या ब्लड प्रेशर दी अहां गल करिए हर कुसी अंदर जिहड़े से बीपी हाई दी जिहड़ा समस्या है से बिल्कुल आम है। कने अहां कुथी ना कुथी ये जिहड़ा अपना ख्याल है से रखना भुलियांदे या अपनी सेहत जो नज़रअंदाज करना जिहड़े से शुरू करिंदे। अगर डॉक्टर दी सलाह ने अगर अहां गल करिए अगर कोई भी बीपी दा मरीज है कने बीपी हाई है तो उस जो हमेशा ये बोलिया जाता है कि जिहड़ा मसालेदार खाना है या तला भुनिया खाना है से बिल्कुल नहीं खाना है। अगर फिर भी अहां तलिया भुनिया खाना खाते न या नमक ज़्यादा खाते न तो कुछ ना कुछ इसे अहां दी सेहत पर प्रभाव जिहड़े से जरूर पाता है। तो अपना जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखन नमक दा जिहड़ा सेवन है से बिल्कुल कम करन। सेहत का ख्याल अगर तुहां रख गए ताई तुहां अपना ध्यान जिहड़ा है से जरूर रखी सकते। अगर हाँ गल करिए कि हेल्दी फैट जिहड़ा चुनने की गल करना तो दिल की सेहत वास्ते क्या क्या खाना हाँ जो जरूरी है बादाम की अहां गल करन अखरोट की अहां गल करन या जैतून का जिहड़ा तेल हुंदा या तिदे जिहड़ा अलसी दे बीज सभी अहां जिहड़े से ले सकते। कने अपनी सेहत का जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखी सकते। कने हेल्दी खाना खाने दे बाद जिहड़े से रोज़ाना कम से कम जिहड़े से 30 मिनट जिहड़े से अहां कसरत जिहड़े से करी सकते। कने अच्छी जिहड़ा नींद है अगर अहां से लेंदे न तो अहां दी जिहड़ा सेहत है से फिट रहिंदी है तुहां सारे जो ही पता है। कने इसी कने अहां थोड़ा दे अग्गे बढ़दे न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचांदे न। सुनदे नी सा प्यारी दी फरमाइश है जो तुहां सारे भी इंजॉय करा। ये फरमाइश अहां पहुँचा देन हूँ तुहां सोचा दे होने न कि ये फरमाइश अहां कुथू पहुँचा दे। ये फरमाइश अहां पहुँचा देन नरवाणा कने तिना दा नाव है राकेश जी। राकेश जी तक ये पहुँचा देन फरमाइश तुहां सारे भी इंजॉय करा।

0: with a brand new design.
1: ये तो हाँ सारे अंदर अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तो हाँ सारे इंजॉय करा दे ने इस गीत जो तो हाँ सारे ते माफ़ी चाहती है कि थोड़ा दिया बीच पर कोई ना कोई जिड़ा जिंदगी का उतार चढ़ाव है से हमेशा चले रहता तो इसी करने ये गीत तो हाँ तक पहुँचा दे न श्रोताओ इस गीत जिहड़ा दर्शाया कि घड़ा चुकी करी मैं पानी जो चली पर आज के दौर की अगर अहाँ गल करिए तो अजकल घड़े का पानी जड़ा से अहाँ जो कुथू दिखने जो मिला था कुथी कुथी जड़ा से घड़े का पानी दिखने जो मिला था कने घड़ा चुकी करी जड़ा से अहाँ कुथी कुथी पानी जो

तो तुम तो सारे एक ही तो इंजॉय किया कने इसी कने तुह तो सारे जो पता है कि कार्यक्रम का जोड़ा समय है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो थोड़ा जहा अगे बढ़ते हैं कने अगला जोड़ा गीत है अगली जोड़ा फरमाइश है से तुह तो तक पहुँचाते हैं समय का जोड़ा कमी अहल है तो समय के अनुसार अह चलते हैं सुनते हैं इस भजन चो।

दोहा सारियांदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शतों इस कार्यक्रम का जिहड़ा समापन है या तुह सारे जी पता है कि इस कार्यक्रम का सफर तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक तो इसी कन्ने तुह सारे अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कन्ने हमेशा खुश रहा हंसते रहा कन्ने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुनगुनाते रहा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए जीजीआई के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। जीजीआई आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर में

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं,
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे,

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं,
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे।

नमस्कार श्रोतों, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंचन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुचुगो कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है जी, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोता गणरा। श्रोता मौसम बहुत प्यारा है इस समय धर्मशाला मंच के बल दिन तो सब प्यारा ना बहुत अच्छा और सुहाना मौसम किया सो इस समय बन रहा श्रोतों धर्मशाला मंच और इसी वास्ते किया सो धर्मशाला फेमस है क्लाइमेट वास्ते वेदर वास्ते श्रोतों ये जो प्यारा दिया इस समय मौसम है इसी वास्ते धर्मशाला इन देखिया सो फेमस है और इसी वास्ते जो इडी रेंदा है सुठियारा बुझ कर रेगंदा हा सिर्फ और सिर्फ इस मौसम री वजह था। बाकी कुछ ऐसा खास इन दने देवते वे अलावा किया मतलब कुछ ऐसा एक अक स्टेडियम रे अलावा है ना और इवन की टूलिप गार्डन भी बनना तो परसों भी चली गई रही हूँ तो कुछ ऐसा खास नहीं है सिर्फ और सिर्फ मौसम ही किया स्वादभुत और बहुत प्यारा है बहुत नज़ारेदार है। शोतों इस समय है गल करने मौसम रीता 20 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो तापमान बन रहा है श्रोतों और न मेरी गल करूँ तो न मैं इस समय बिल्कुल थोड़ी करी ज़्यादा के आसो बन रही है श्रोतों और ये धर्मशाला रहा मौसम है जी जो तो है रू कर देना ये धर्मशाला रहा मौसम है प्यारा दे मौसम ये धर्मशाला रहा मौसम है। बहरहाल कार्यक्रम मंच आगाज कर लें देन और आगाज प्यारे दे गीतों के ऐसो असो जरूर करना है और आगाज सो किसो की तो सब कॉल जरूर कर सकते हैं श्रोतों 708-8-8-709 पर नंबर अक मुके फिर ही तो वह शेयर करनो और साझा करनो और 708-8-8-709 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर कर ही अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी की सो होगी साझा कर सकते हैं और ऐसा गल्ला रहा खास ख्याल रहे श्रोतों खास ध्यान रहा कि जानकारी किया सो रेडियो मंज दसने लायक जरूर बो श्रोतों जानकारी किया सो रेडियो मंज सांझा करने लायक किया सो जरूर बो। ता चलिए जी मौसम भी अच्छा है और मौसम सोगी सोगी लाइट भी इंदी चले आया आई थिंक बहुत सारी जगह की ऐसो तूफान थू आंधी चल रही थी थोड़े करी तूफान चल रहा थू तो टेरी वजह लाइट की ऐसो कट थी बहुत सारी जगह तब लाइट की ऐसो चले आया ऐसो तो चलिए जी आगाज कर दिन और आगाज माँ हुन दिन तू सब भी प्यारे दिया अगीत तुम दे सब भी रे रेडियो सेट माँ बने रे वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोत

0: हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव चल रही जी इस समय। आइए तो सब श्रोता इन दो श्रोता सूगी जुड़ रहे भी थी है लेकिन तथों तो अगले श्रोता सूगी फिर जुड़ गया हिन तो पूछ लंदन जी कौन बोलूंदेन और खड़ी थो बोलो कर देन। नमस्ते जी।
1: हेलो, नमस्ते भाई जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: ठीक हो आप?
0: हाँ जी बढ़िया जी। कौन बोलूंदेन और खड़ी थो बोलूंदेन?
1: मैं साक्षी बोल रही हूँ।
0: अच्छा जी साक्षी जी, किना मौसम सुंदी किनारी?
1: बारिश लगी है इधर।
0: अच्छा ता साक्षी जी कौन देने की थोड़ा तुसु?
1: बंगला मुखी करने है गाने।
0: बंगला
1: मुखी माता का।
0: अच्छा जी ठीक है जी, जरूर होने ले।
1: हाँ जी, धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद जी। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम लाइव बिल्कुल चल रहा है इस समय। इन अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड हैं पूछ दिन कुट बलून दर। नमस्ते जी। नमस्ते वेड़ी गुंजन मा स्वागत है।
2: नमस्ते साचिन जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक न?
2: ठीक ठाक जी, ठीक ठाक।
0: और कर कर लगुरन?
2: कर लगन बस जे।
0: अच्छा तो मौसम तो बढ़िया बचगो खरा है ना जी?
2: हां जी बढ़िया बचगो, जरा हवा तो के गच्चा ना।
0: हाँ तो काफी ज्यादा लग रहे, तूफान काफी ज्यादा। अच्छा ब्रह्मानी माता रा भजन।
2: हाँ जी
0: ठीक है जी। और नोएता जी कुछ?
2: तो नोएता जी के बड़े होता है, नोएता जी बची गई है, प्रधान बन गए, उप प्रधान बन गए, पंच बन गए, तो नोएता जी।
0: हाँ बिल्कुल।
2: हाँ
0: चले ठीक है जी, भरमाणी माता रा भजन तू सो जरूर होने ले है ना जी?
2: ठीक है ओके ओके
0: ओके जी।
2: तो
0: चलिए शो तो ऐ चल दें सीधा और लेके चल दे तू आज के विचार री के नारी शो तो बिल्कुल विचार भी जरूरी है। बोल दे कठिन रास्ते के सो अक्सर खूबसूरत मंजिल तक के सो पहुँचन दे। कभी भी तुम्हारी लाइफ में दिक्कत या परेशानी या तो तुसु सोचना कि तुम्हारा जो राह सो थोड़ी करी मुश्किल है लेकिन जो ठिकाना होना सो बेहतरीन होना है। और बोल दे अख प्यारी दे मुस्कान के सो दूजे जो दीना चाहते हा और ये प्यारी दे मुस्कान थों किया सो बड़े बड़े काम बच गए, सो बड़े बड़े रिश्ते बच गए जो अक्सर टूटने रे कतार पर किए सो बिखरे बंदे ने। सो प्यारी दे मुस्कान बहुत जरूरी है, हंसते खेलते बहुत जरूरी है। कभी भी जिंदगी में शो तो इन सियाने भी बलते थी है ना, तीन उसी खुरा में भी कि जिंदगी में कभी भी हम ना करना। जिन्हें बंदा है जिंदगी में हम करी लो सो बंदा कभी भी फिरे हागो ना बढ़ सकता। और दूसरी गल की जिंदगी में कभी ये भी ना सोचने की अपनी अपनी अपनी तरफ थो बेहतरीन करने की कोशिश करा, अच्छा करने की कोशिश करा, ऊपर वाला किया सो सब लेख किया सो इंदे लिखो करता हा। और इसी बीच आऊँ तू दसना चाहता शो तो कि तो है चलो सब चीज़ अगेन सो बुझ गंदी लाइफ में है ना, पैसा भी कमाई लेंदा इंसान, रिश्ता भी निभाई लेंदा है ना, कदी चलो बुची भी गंदी आ उन्नी इक्की गल, लेकिन इस बीच इंसान की असो अपनी सेहत का ख्याल की घरे रखता हा। अपनी सेहत वास्ते कुछ तो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखने और कुछ बहुत ज़्यादा चिंता करने वे वजह थों किया सो अपने अंदर दुख बीमारी रोग के असो पाई लेंदे हैं। खाने पीने भी गलत आदता शतों तनाव कसरत री कमी और पूरी निंदर ना लेना निंदर ना लेने रे कारण क्या सो सब उम्र रे मनु कहन कसी भी जाए उम्र कोई भी हो सभी उम्र रे मनु कहन सो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ रे मामले में क्या सो तति मत तेजी हिंदी है और बढ़ोतरी बुंदी है शतों। ज़रूरी गल है कि एक अच्छी तरह थो बनूरा एक डाइट प्लान किया सो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों वे लेवल किया सो कंट्रोल कंट्रोल में रखने रहा अहम भूमिका के सो तो सो निबंधा। विशेषज्ञ रही अगर है गल करने शोताओं ता जरूर यार बारे है जरूर दस ले विशेषज्ञ रही अगर है गल करने ता आसान बदलाव बुझ सकते किस तरीके हो कि क्या क्या बदलाव के अन शोताओं सो बुझ सकते सो है तो

जरूर दस ले, जरूर इस बारे यहाँ तुसों की चर्चा जरूर कर ले। लेकिन आइए जी कार्यक्रम जो थोड़ा करिए और आगो बढ़ते हैं और फरमाइश रहा दौर के आसो पूरा कर लेंदे बने रहे। तो सब आर जे सचिन कपूर सो के गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस समय तो है सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव हुनु करते हैं निंदी अपनी गपा वेडी गुंजन धर्मशाला तो हूँ तो सब भी इस कार्यक्रम में जुड़ी सकते हैं श्रोता हूँ 7081889 पर हिंद श्रोतागण असोगे कनेक्टेड हिंद पुस्तन कौन बल लुंदन नमस्ते जी
1: नमस्ते सचिन जी
0: नमस्ते जी नमस्ते जी कौन बोल लूं देन और कड़ी थों बोल लूं देन
1: आओ दानु थों बोल लूं बंदे हर सिंह जी
0: अच्छा हर सिंह जी क्या क्या हाल ने तुम दे और क्या हाल ने तुम दी सेहत रहे
1: ठीक है जी आज तो बिल्कुल ठीक
0: है अच्छा और मौसम भी खराब हो चुका ठंडा ठंडा हल्के हल्के बरखा भी लग रही है
1: हाँ जी हाँ जी
0: हल्के तने थोड़ी तीज ठीक ही लग रही है मतलब बरखा भी है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: ता हर हर सिंह जी कुंडे ने गीत होना पसंद कर ले पहले तो ये दस दिया
1: चलिए वो कलाकार जाना शिवा रावासा
0: अच्छा शिवा रावासा चलिए ठीक है जी और कोई लाइफ में कुछ तो है ठीक चल रही जिंदगी मतलब तुम दी अप्स एंड डाउन तो नहीं लाइफ में चल रहे
1: ठीक है जी जुलता बोलना ठीक है नमाल की जैसा हूँ
0: बिल्कुल जी एरलिया जो जो दिन जीना बंदा ना जो दिन जीलो घरे गीत है जो दिन प्यारा होगी जीलो सोई अपना बंदा क्या बोलते है ना चलिए ठीक है जी इजाजत दिया नमस्ते
1: धन्यवाद जी
0: जी श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और अगली फरमाइश बहुत प्यारी फरमाइश भी है और जिन्या फरमाइश करे सो कपल भी अपू बहुत प्यारा है बहुत अच्छा है इंदे विश्ते में भाई भाबिन और शायद भाई तो बड़े गरीबी है बिल्कुल पंकु पठानिया जी जो कि योल टीका चतैड़ नोडरानी मंदिर रे निवासी हिन और त्यारी जो अर्धांगनी है खुशबू तिन्या ये फरमाइश करिया ता जरूर ये फरमाइश तुसु तक रह है पहुँचल ले और फिलहाल ये बोलना चाहता कि रिश्ते के श्रोतों से बहुत प्यारे बंदे बहुत नाजुक भी बंदे हैं रिश्ते जो रिश्ते री डोर है सो बड़ी नाजुक बंदे श्रोतों ये अगर तो है इस जो खींच लेते हैं टूटी गाना इस डोर जो टूटी गाना और ये डोर संभालना बड़ी मतलब बड़ा टफ कम नहीं है लेकिन हाँ टफ भी हाँ टफ भी हा अगर तो है इस रिश्ते जो बेहतरीन बनाना चाहता है ऐह सब भी इस रिश्ते जो जो हस्बैंड वाइफ रहा रिश्ता बनता है कहती हैं कि सो बैलेंस करी करी सो सब भी हो गया सो चलना पैंता है ना जिंदगी में बड़ा मज़ा आता अगर जिंदगी बैलेंस करी करी कि सो है चलना और लाइफ में अप्स एंड डाउन किया सो सब भी रियाँ इंदन शोतों इंदियाँ भी इंदन तुंदियाँ भी इंदन हर किसी भी लाइफ में किया सो अप्स एंड डाउन इंदन लेकिन बल दिन कि जहने भी इस तरीके होगी जिंदगी सो होगी खेलने लगी पे तो अपने आप जो ये सोचना क्या है खिलाड़ी क्या ना सो बढ़िया हीन है ना ताई जिंदगी की सो सो होगी खेलो कर दी है और जिंदगी अक्सर तसी होगी खेल दे जो खिलाड़ी बेहतरीन बुआ जो खिलाड़ी बढ़िया हुआ शतों ता इसी पर मुझे याद आया अक गल की बलदेन की उस शख्स जो कोई गिराई ना सकता जिन्हें चलना ही ठोकर था कि सो सिखरा बुआ है ना और लाइफ में बहुत सारी ठोकर के ना सो सब भी लग दिन है ना और सो इन गद्दी अंदर कहावत भी आता शो तो उनकी पत्थरा तो गोड़ के बुआ बल्लो लुड़ी लुड़ी तो ते लुड़ी लुड़ी हर कोई की ऐसो पक्का बुछगंदा हर कोई की ऐसो गोड़ बुछगंदा और हर कोई की ऐसो अपने तरीके होगी चीज़ा जो बैलेंस करना सीखेगंदा बहरहाल इस टॉपिक जो इटिए छ अच्छी सेहत रहे वास्ते टिप्स की सो दिछु कर दे इन शोतों आज के इस कार्यक्रम में सो तुसु तो कह जरूर पहुँचल हेरा संतुलित नाश्ता करना की सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी शोतों नमक रा सेवन कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही फला रा चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शोतों हेल्थ फिटनेस वास्ते कि सो चीज़ा मंच अपने आप जो किया सो अपने माइंड जो तस हिसाब होगी ढालना बड़ा ज़रूरी है श्रोतों बहुत सारी गल्ला रह गया सो ख्याल रखना चिंता अपने आहार में किया सो ज़्यादा फाइबर शामिल करा श्रोतों अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी सो के किया सो ज़रूर करा इन्या सभी पर है चर्चा किया सो ज़रूर कर रहे लेकिन आइया है चल रही थी है पंकू पठानिया री फरमाइश और खुशबू पठानिया री फरमाइश री और ताइया ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਸੂ ਤੱਕ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਆਰ ਜੇ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਸੋਗੇ ਗੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੂੰਜ ਪਿਆਰ

बिल्कुल, दुनिया रा सब थों ज़्यादा खूबसूरत और अनोखा रिश्ता भुंदा हा शोतों पति पत्नी रा, जतिमा प्यार भिया, तकरार भिया, विश्वास भिया, समर्पण रा अनोखा संगम बेहा। जी, इस पावन पवित्र बंधन जो इता पति पत्नी रा रिश्ता किया सो बलते हैं। बहरहाल बंकू पठानी और खुशबू पठानी अरी फरमाइश में है प्यारे दे गीत के श्रोतों, ईशान भारद्वाज री आवाज़ में हुनु हा। और हाँ, मैं दसूँ ना कि प्यार भी आ, तकरार भी आ, नोक झोंक भी आ, और एक ऐसा रिश्ता शोतो जति माँ हर बेगा शुरू बुंदे या हर शाम सुहानी बुंदे हा, और हर सांस सिर्फ अकीवा ना बुंदा हा, है ना। ये रिश्ता ऐसा ऐसा हा शोतो जति माँ रुठना भी बनदा हा, मनाना भी बनदा हा, हर पल बिताना भी बनता हा, अच्छा भी लगता हा ये रिश्ता। और रिश्ते रा ना ही कुछ बहुत दमदार है, पति पत्नी रा रिश्ता है दमदारता है ना। कजो कि जो पति पत्नी में रिश्ते अंदर बिच अंदर आ सो बुरा बनी गंदा, कहो लाड़ा लाड़ी के कर दें थोड़े दिन बाद बनी गंदे ना। हर कसरी यही कहानी है शोतों। चलिए बहरहाल अह बलदन तकरार भी करा, प्यार भी करा, और थोड़ा दिया दोनों अकी दुए होगी इकरार भी करा। रिश्ता इंदा कुछ ऐसा है जनाब, लड़ना भी सो गया और हंसना भी सो गया, है ना, सब भी असू। तो चलिए बहरहाल कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़े देन और सेहत री गल करूँ कर देती है जनाब। चलिए गीत इंजॉय वास्ते बहुत अच्छा लगो, फरमाइश वास्ते बहुत अच्छा लगो, बहुत नोक झोंक की थी अंदर भी भोया पति पत्नी रे बिछ, है ना। चार दिन जिंदगी रा डेरा हो ताइयों मैं वेंदा पी करी ढेरा हो, पत्नी फिर तसियो आर्गू करी करके असो समझाओ कर दिया कि शराब के असो शराब तो मुझे ही लगता कि चलो मतलब ये हो लीव कर देना, लेकिन आजकल जो नशे चल रहे हैं श्रोताओं, जो सूखे नशे चल रहे हैं ना, सो इतने तकड़े नशे ना, इतने तुसे तीन नशे जो अगर तराए थो चोर मौके कर ले

तो तू है एडिक्ट क्या न सो बन गया नहीं तू सो एडिक्शन किया सो तिया सुके नशे रह गया सो लगे गो हर सो तो ऐसे बहुत सारे सुके नशे जी हूँ हर बार बन लूँ सो अपने जो खास करे चलिए जो ये यू था जो 15 साल था उन लेकर 21-22 साल तक 25 साल तक जो यू था इन्या जो समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्या सुके नशे था कि यह सो दूर रहे जो कि सुके नशे ना मतलब शराब भर ही तय है कि बियर पी ली शराब पी ली चलो 2 घंटे 4 घंटे नशा था ती बाद आदमी मतलब उतना एडिक्शन ना बनता अगर सो अगर पार्टी वास्ते यूज़ करूँ करता हाँ या फिर बै कार्ज अंदर अपने इंजॉय वास्ते यूज़ करूँ करता हाँ तो इतना एडिक्शन नहीं तेरा। लेकिन ये जो सुके नशे यार बहुत एडिक्शन है तो है चौथी तो मन भी बार ले ले सोतो तो तुंदे घर बर्बाद बुने और ऐह इतनी पर काम कर रहा सोतो है हेरोइन इन दे अपने वीडियो ऑर्गेनाइजेशन गुंजन ऑर्गेनाइजेशन अपने चूर के न सो डी एडिक्शन सेंटर ने तो है ये साहब गदाब भी हेरुआ कि तुसू मनना ने कस की वे 2.5 साल रे को कस की वे 2.5 साल रे बच्चा कस की वे नवा बह बुआ सो भी किया इतने एडिक्ट बंदे न पहले रहे और फिर तती बाद पेरेंट किया सो तिन्यो ब्याई मंगाई दिन देन और त्यारे अपनी पहले तो चल अपनी केले भी जिंदगी बर्बाद बंदे लेकिन तत्थों बाद पूरे टबरा रे किया सो जिंदगी बर्बाद बंदे हा सो मेरी आ गुजारिश भी आ इन्या पेरेंट थो जो सुके नशे कर दिन तुंदे बच्चे तिन्यो मत ब्याह मंगा है ना जो ये भंग चरस गांजा अफीम इस तरीके रे सुके नशे जो भी कर दें तीनों मत ब्याह का जो कि यहीं तो चलो केला है ना सो तीनों बाद दो दो जिंदगी तराई तराई जिंदगी के ना सो बर्बाद बुंदी हिन सो सेहत रख ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जनाब। ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर आज रे समय में किया सो आज रे लाइफ स्टाइल में किया सो जुड़ रहा हा सो तो वो सब तो आम ये लगता कि स्वास्थ्य समस्या है ना बड़ी आम दे स्वास्थ्य समस्या है शुगर शुगर बुझेगी ब्लड शुगर बुझेगी ये बड़ी हाई ब्लड प्रेशर बुझगो ये बड़ी आम दे समस्या आज कड़े लाइफ स्टाइल में सो तो खाने पीने रही गलत आदता तनाव कसरत रही कमी और पूरे पूरी नींद पूरी निंदर किया सो ना मिलने का कारण भी किया सो उम्र थों पहले किया हाइपोटेंशन और डायबिटीज़ रे मामले के ना सो तेजी थों बढ़ू कर देना और बढ़ोतरी किया सो बचू कर दिया जरूरी गल है सो थों किया अच्छा अच्छी तरह थों किया सो बनाया गया डाइट प्लान ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों जो लेवल माँ के सो कंट्रोल रखी सकता हा लेवल जो कंट्रोल माँ के सो करी सकता हा सो तो खाने में अहम भूमिका के सो निभाए सकता हा विशेषज्ञ रिया गया अगर है गल करने सतो तो विशेषज्ञ रे मानना हा कि खाने पीने भी आदत में कुछ आसान बदलाव करी करे तो है अपने पूरी सेहत जो कि सो बेहतरीन बनाए सकते हैं बेहतर बनाए सकते हैं दिलारी बीमारी रा खतरा के सो कम तो है करी सकते हैं सतो और अपनी जिंदगी रे क्वालिटी जो किया सो भी सुधार ही सकते हैं ऐह तुसु ऐसा डाइट प्लान दसना चैलेंज सो तो आज जठेरी मदद हो तो है अपना बीपी और ब्लड शुगर दोनों जो नेचुरली कंट्रोल किया सो कर सकते हैं सो जो भी ब्लड शुगर रे पेशेंट हैं सो ध्यान दें जो भी बीपी रे मरीज हैं सो ज़रूर ध्यान दें सभी पहले अपने दिन की शुरुआत अपनी ब्याग किया सो गुनगुने पानी थोगी पानी सोगी करन अपनी ब्यागरी शुरुआत किया सोतों सो आ गिलास गुनगुने पानी सोगी करन और अगर तुंदी सेहत रे हिसाब सोगी ठीक आ तस हिसाब होगी कि सो पानी लैन गुनगुना है ना तो है इतिमा के असो नींबू रा रस कुछ बूंदा के असो नींबू री पाई सकते हैं और इतों के असो शरीर हाइड्रेट रहिंदा हा और पाचन में मदद किया सो मिलती हा सो तो जगने वे तुरंत बाद मीठी चाय या कॉफ़ी या पैकेट वाला फल या जूस पीने थों बचन क्योंकि इतिमा ब्लड शुगर रा लेवल के सो अचानक किया सो बढ़ाई दिंदा हा बहुत सारी जानकारी ने इस थों रिलेटेड जरूर तुसु तक पहुँचल है वेड़ी गुंजन धर्मशाला एफएम बैंड 91.2 MHz पर तो है सब ये किया सो इस समय सचिन कपूर जो ट्यून कर रहा तुंद अपना आरजे और कुछ एक जानकारी ने सो भी तुस हो गया है ज़रूर शेयर कर लें लेकिन आइया अगली फरमाइश कर दें शिवरा कैलाशा जरूर ईशांत रा ये गीत है श्रोतों है ज़रूर तुस तक पहुँच ले लेकिन तत्थों पहले आइए लेकिन चल दे तू सब भी जो इस प्यारे दे गीतारी किनारी बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगी गूंज
अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रही। फरमाइशा जीवन कपूर उफ करमूरे।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और राउ सचिन कपूर है तो सोगी तुम अपना आर से रेडियो जो कि बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर सभी होने वाले रहा हार्दिक अभिनंदन हाँ। आइए श्रोताओं कार्यक्रम से थोड़ा करिए और आगो बढ़ दें ऐह वैसे गाल करू कर दें आज अच्छी सेहत रे टिप्स तुसु तक पहुँचाओ कर दें लेकिन आका जरूरी विशेष जानकारी की ऐसो तुसु तक पहुँचाना कि ऐसो इनका दायित्व बनेगंदा इनका कर्तव्य के ऐसो बनेगंदा बिल्कुल ध्यान दें यह जानकारी री किनारी श्रोतों तुसु सभी थों है विनम्र निवेदन कर दें जो आऊँ जानकारी तुसु तक पहुँचाना लगो अगर तुसु ये जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इस समय अपना रिकॉर्डेड किया या वीडियो बना सकते हैं रेडियो मंच इसी जो तो है जरूर वीडियो बना लिया है ना या रिकॉर्ड कर लिया हाँ मेरे साथ होगे तो सब किए सो अपना वीडियो ऑन कर लिया क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है श्रोतों बहुत अहम है जो कि सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ दे जो कि कक्षा छः अंदर आ उम्र सारे बच्चे रे 11 साल आ शैलवी यारा ना हा और आज छः तरीका जो कि आ ये लगभग 9:30 थों स्कूल गेट है थों बाहर थों कि सो लापता बुझ छू रही है यदि किसी भी व्यक्ति जो शैलवी रे बारे में पता लगता या कोई जानकारी तुसु मिलते हा या कब खा तुझ तो है हेरे है शैलवी सेक्रेड हार्ट स्कूल रे है एड्रेस लो रे बुनिया तो कृपया करे करे आऊँ जो नंबर लगा देना इस नंबर पर तो है ज़रूर संपर्क कर एन दे तहे दिल थों गुजारिश आ नंबर लिख लिया जी 0 1 8 9 2 2 2 4 2 8 पर और अब मोबाइल नंबर लिख लिया 8 2 1 9 5 3 5 0 6 0 पर अग मौके ज़रूर हिंदी में अनाउंस करना चाहता है नंबर वैसे इनका क्राइटीरिया क्या सो बिल्कुल गद्दी रहा लेकिन ये थोड़े करे जो कि 6 साल रे बच्चे हा और मो बिल्कुल 6 था वाठ इनका लाइव कार्यक्रम की है सो हिंदी में बंदा तती माँ आऊँ अच लाइव मुँह अपो ही करना हा तो तती अंदर में आओ है जानकारी जो ज़रूर तुसु तक पहुँच रहा है हिंदी अंदर भी लेकिन फिलहाल जो इनका अपने मनो हिन जो इनकी कम्युनिटी होनो कर दे जड़ जड़ी भी मंजो होनो कर दे हा अलग श्रोता होनो कर दे तथा अग मौके में भी फिर गुजारिश है जी तो है सब किया सो जरूर तू शैलवी यह बच्ची रहना 11 साल रे या 6वीं है पढ़ दे सेकेंड हार स्कूल है और बैगा लगभग 9:30 थों बाद के सो गेट थों बाहर थों ये लापता है और सेकेंड हार ड्रेस अंदर सेकेंड हार स्कूल रे ड्रेस आई थिंक सब भी हेरुए बुने तस ड्रेस अंदर ये बुने हैं शो थों नंबर हिंदी है बलिन 8 2 1 9 5 8 2 1 9 5 3 5 0 6 0 8 2 1 9 5 3 5 0 6 0 पर आप संपर्क कर सकते हैं तो ये सब किया सो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ना अगर तुस वो शैलवी कर का हो जाता ज़रूर मेरा तुस हो गई गुजारिश है और अगर तो है वीडियो बनाए या ऑडियो बनाए तो ज़रूर यह जो भी तो है किया सो वायरल कर दिया कि करखा बीन दे बच्ची हुज दे सेकेंड हार्ट स्कूल एड्रेस अंदर तो ज़रूर संपर्क करो और सभी पेरेंट्स हो गई मेरा एक गुजारिश भी है कि अपने बच्चे जो कि सो टाइमली तो है स्कूलों जो स्कूल रे गेट ले या स्कूल अंदर ना गाने इंदा तो गेट ले गया सो जरूर खड़े गच्छा है ना सो तो स्कूल मैनेजमेंट रे फिर जिम्मेदारी बनी गंदे गेट अंदर है ना लेकिन गेट तो बाहर किया सो जरूर तो है सब टाइमली किया सो अपने बच्चे रिसीव कर लिया क्यों कि इस प्रकार हादसे के ना सो हिमाचल प्रदेश में आए दिन भुच्चू कर देन बी केयरफुल एंड बी रेडी कि इस तरीके की चीज़ा असोगी भू सकती अगर अह इफ वी आर केयरलेस ताए असोगी भी जरूर बोल सकते हैं बहरहाल तो सब बन रहे समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम होनो करते हैं इन श्रोतों हिंदी अपनी गपा अपने अपने रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच जिंदगी खूबसूरत है जिंदगी प्यारे हा जिंदगी बहुत प्यारे है जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर तो है खूबसूरती होगी जिंदगी जो हेर देन परख देन और जिन देन था तो चलिए जी इस बीच ये प्यारे दे गीत तुसु सभी वास्ते हिंदी साइड थो

शोध एफ एम एंड इक्यानवे दशमलव दुई मेगा हर्ट्स पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुड रॉर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप कहने सो तो सब हूँ करते हैं शोतों आप वक्त बुझे तुसो सभी थो इजाजत लेने रहा गंदे गंदे प्यारे दे गीत जरूर तू सभी है जरूर होने ले, लेकिन जो है गल करू करते थे तथी पर यह बिल्कुल समय रहा अभाव लेकिन चाहिए थो अठिंदा फिर कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला तथी माँ बिल्कुल विस्तार पूर्वक के शोतों हिंदी मंच तुसो समझाने गल बहुत अहम नहीं दे कुछ सियाने इन जो परवाह न मार देती हो बेमतलब टेंशन है सो लैने की आदत है बेमतलब चीज़ों के बारे सोचने रही है सो आदत है तथों तुम्हारा शरीर की आ सो बहुत खराब हुंदा हेरा सभी पहले तो संतुलित नाश्ता करा शो तो नाश्ते रा नाश्ते दिन रा सब थो जरूर

पूरी भोजन बुंदा है तो ये छड़ना ना चिंदा इस जाए जितनी मर्जी आग लग दे रहा नाश्ता मत छड़ा सो तो है ना जी इस इति छड़ने थो कि आ तो है सब यूँ ज़्यादा किया सो तो सो एक घातक है अगर तो नाश्ता छड़ दें तो स्वास्थ्य सब यूँ ज़्यादा घातक है सो तो और ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर का लेवल भी किया सो ऊपर थल्ले बुचगंदा फिर हुई थी तो है ना जी नाश्ते में कुछ हेल्दी विकल्प के ऐसा तो है ले सकते हैं मेवा कर लिया मेवा खाई लिया है ना और जो बीज वाले ओट्स बुंदे दलिया बुंदा सो खाई लिया हरी सब्जी खाई लिया है ना सब्जी वाला पोहा खाई लिया पीनट बटर खाई लिया मूंग दाल रहा चीला और सांभर रहा सांभर सोगी इडली खाई लिया इस तरीके की चीज़ा सेहतमंद चीज़ें तो है खाई सकते हैं सो तो पनीर खाई लिया है ना या कुछ भी जो प्रोटीन जतिमा भरपूर व खाद्य पदार्थ शामिल जतिमा भून सो तो है खाई सकते हैं ताकि लंबे समय तक पेट भरे रहे और अच्छा तुसो महसूस हुआ है ना अपने आहार में ज़्यादा फाइबर शामिल करा सो तो है ना फाइबर खून में शुगर वे घुलने की गति जो कि असो धीमा करी दिंदा हा और कोलेस्ट्रोल रा लेवल भी कि असो काम करने में मदद करी दिंदा फाइबर में अच्छे स्रोत जियाँ साबुत अनाज बुचगो शोतो ओट्स बुच गए ब्राउन राइस बुच गए फल सब्जी ये सब चीज़ें बुचगी है ना इन सब भी चीज़ें तो कोशिश करन कि तो अपने हर भोजन में फाइबर तो भरपूर खाद्य पदार्थ के सो शामिल करन सही फल रहा चुनाव करन फल सेहत वास्ते बहुत अच्छे बुंदे ना और लेकिन कुछ फल प्राकृतिक शुगर की मात्रा तो ज़्यादा बुंदे ना जिन्या मणु जो ब्लड शुगर हा ज़्यादा वेंदे हा सो फल रहा सेवन सीमित मात्रा में ही करन फल वे कुछ बेहतरीन विकल्प हैं सेब नाशपाती अमरूद पपीता संतरा और इस प्रकार रे फल है ना फल वे जूस थो ज़्यादा सेवन करने थो भी बचन शतों को कि अक्सर फाइबर ही किया सो शुगर की मात्रा जो बहुत ज़्यादा किया फाइबर ना भूने रे कारण कि सो शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी गंदे नमक रहा सेवन कम करने शतों फिलहाल तू सभी तो इजाजत लेने का समय पूछेगा ना गंदे गंदे तू सभी ये बोलना चाहता हंसते रहे मुस्कुराते रहे और रेडी गुंजन मार्च सचिन कपूर चो हैं हुनते रहे और हुनते रहे मुलदन चाहिए था वट नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। एयरट्रंक करेगा इकोसिस्टम में 30 अरब डॉलर का निवेश। शिमला में होगी अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप। जीआई टैग से बदलेगी हिमाचल के पारंपरिक उत्पादों की तस्वीर। इंश्योरेंस में बदलेगी हिमकेयर योजना। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में आए भूकंप के झटकों से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में दहशत फैल गई। कांगड़ा, मंडी, सोलन, चंबा, हमीरपुर समेत क्षेत्रों में लोगों ने तेज कंपन महसूस किए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कल रात 10:04 पे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 दर्ज की गई है तथा इसका केंद्र चंबा धर्मशाला के सेंटर में आसपास बताया जा रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अपना रुख दोहराते हुए शुक्रवार को स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से बंद नहीं करता, तब तक ये संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय की ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान द्वारा चिनाब व्यास लिंक टनल परियोजना और सलाल बांध जलाशय से गाद निकालने की भारत की योजनाओं पर आपत्ति जताई जाने के बाद आई है। एयरट्रंक द्वारा भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में 3,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वागत किया। साथ ही इसे भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में एक अहम पहल बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की यात्रा तेजी से गति पकड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर 23 जून को शिमला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6 देशों के बॉक्सर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि जयंती समारोह के तहत खेल गतिविधियों के साथ साथ स्वास्थ्य एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू करने की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग ने कदम बढ़ा दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में चयनित सरकारी एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर हरीश कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 6 कॉलेजों में ITEP कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस साल से ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसी नई व्यवस्था के बाद स्कूलों के एकेडमिक कैलेंडर में भी कई बदलाव हो जाएंगे। बड़ी बात ये है कि ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन स्कूलों में इस साल से ही बोर्ड को छोड़कर सभी कक्षाओं की फाइनल परीक्षाएं करवा दी जाएंगी। हालांकि छुट्टियों व स्पोर्ट्स कैलेंडर को लेकर कई बदलाव होने की संभावना बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने तथा उनसे जुड़ी आजीविकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हिमाचल नाबार्ड द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन आधारित विकास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में GI पंजीकरण, उत्पादक संस्थाओं के विकास, बाजार संपर्क और पंजीकरण के बाद हस्तक्षेपों को मजबूत बनाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक का शुभारंभ नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी संदीप शर्मा ने किया। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चुनाव आचार संहिता के बाद अब सरकार बड़े फैसले लेगी। 5 लाख का कैशलेस इलाज देने वाली हिमकेयर योजना को इंश्योरेंस मॉडल पर बदला जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ये एजेंडा ले जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम में 13 जून को दोपहर 1:30 बजे से होने वाले भारत और अफगानिस्तान के पहले डे नाइट वनडे मुकाबले के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए विभिन्न स्टैंडों में टिकट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी कीमत 1500, 2000 से लेकर 12,500 रुपए तक निर्धारित की गई है। हालांकि इस बार IPL व क्वालिफायर के मुकाबले मूल्य पहले की तरह साधारण नजर आ रहे हैं। दर्शकों के लिए सबसे किफायती टिकट 2,000 रुपए में उपलब्ध है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को अधिक आधुनिक, समावेशी और भविष्य उन्मुख बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए HP फ्यूचर्स कार्यक्रम ने एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर पर शुक्रवार को शिमला में समीक्षा बैठक में शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को राज्य सरकार और यूनेस्को के सहयोग से लागू किया गया है। बैठक के दौरान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित रिपोर्ट जारी की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को जल्द लंबित एरियर जारी करने और वन रक्षकों के 500 पद बहाल करने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष ये मांगे उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते और वेतन आयोग ने के बकाया एरियर जारी करने की भी मांग की। भूविज्ञानी डॉक्टर रितेश आर्य ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला के आर्मी कैंटोनमेंट क्षेत्र के पास बलुआ पत्थरों में लगभग 2 करोड़ वर्ष पुराना पाम ताड़ के पत्ते का जीवाश्म ढूंढा है। जीवाश्म पर ताड़ के पत्ते की शिराएं नजर आ रही हैं। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर महेश प्रसाद ने भी इस खोज की पुष्टि की है। बलुआ पत्थर में ताड़ के पत्ते जैसे नाजुक संरचना का इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहना बेहद दुर्लभ और वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हिमाचल में पंचायत चुनावों के बाद अब नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। राज्य सरकार ने इस बार परंपरा से हटकर प्रधानों और उप प्रधानों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को जिला स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया है। 15 जून को प्रदेश भर के 3,754 नव निर्वाचित प्रधान और उप प्रधान जिला मुख्यालयों में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। सरकार के इस फैसले को पंचायत प्रतिनिधियों को सीधे जिला प्रशासन और सरकार से जोड़ने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य सरकार के मंत्री विशेष रूप से मौजूद रहेंगे और नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को राज्य के 7 स्कूलों को उनके पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नवाचारों और लगातार प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। रिज पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरस्कार प्रदान किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शुक्रवार को रेपो रेट तथा अन्य नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की शुक्रवार को समाप्त 3 दिवसीय बैठक में पश्चिम एशिया संकट जारी रहने, महंगाई में वृद्धि, विशेषकर ईंधन की कीमतों में और कमजोर मानसून की भविष्यवाणी के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के लिए GDP विकास के अनुमान में कमी की गई है, जबकि महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया गया है। अब एक नजर मौसम की ओर। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ को सक्रियता से राज्य में आगामी दिनों में भी मौसम का बदला हुआ मिजाज जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 6 दिन तक मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है। 7 और 8 जून को पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। 11 जून को एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के अधिकांश भागों में व्यापक बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका अपना RJ वीडी जो कि सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ कार्यक्रम लेकर गुड इवनिंग धर्मशाला। इस गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं आप बहुत सारी जानकारियाँ सुनेंगे और जानकारियों के साथ साथ अब तक हम गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी हम पहुँचाएंगे। बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो बिल्कुल वेणी गुंजन के माध्यम से आपके घर तक जो है, घर द्वार तक जो है वो पहुँचेंगी। श्रोताओं आई तो सबसे पहले जो है वो धर्मशाला का मौसम हम जान लेते हैं कि इस समय धर्मशाला का मौसम क्या बोल रहा है। वाकई में श्रोताओं धर्मशाला का मौसम अपने आप में ही जो है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का पर्यावरण जो है वो बहुत खूबसूरत है। सिर्फ और सिर्फ हमें इसको संजो कर जो है वो रखना है, सजा कर जो है वो रखना है। तो इस समय की मैं बात करूँ श्रोताओं तो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो मौसम है, और ह्यूमिडिटी की बात की जाए, इनकी नमी की बात की जाए तो 63% जो है वो नमी है श्रोतों। तो एक मौसम खूबसूरत है, सुहाना है। और ऐसा होता है कि मुझे एक मेरे दोस्त कह भी रहे थे कि यार हिमाचल में आप रहते हो और हिमाचल में, हिमाचल के खासकर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में अगर आप रहते हैं तो आप बड़े खुश नसीब हैं। मतलब आपको दो दिन गर्मी पड़ी नहीं, तीसरे दिन ऐसा लगता है कि आपके ऊपर इंद्रनाग महाराज जी जो है वो कृपा बना के रखे हैं। तो चलिए जी, ये कृपा हम सब पर बनी रहे, यही आशा हम सब करते हैं, यही तमन्ना हम सब करते हैं और यही उम्मीद जो है वो हम सब करते हैं कि ऐसी कृपा जो है वो हम पर हमेशा बनी रहे, है ना जी। तो आइए जी, आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस गीत के साथ, और आगाज़ के बाद अन्य जानकारी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे विड़ी गुंजन धर्मशाला के माध्यम से।

FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब लेके चलते हैं आप सभी को आज के विचार की ओर। श्रोतों कहते हैं ना कि तुम्हारा अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है, सही तरीका, सटीक तरीका और एकमात्र तरीका जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। जी बिल्कुल, सभी का जो है वो अपना अपना तरीका होता है, सभी का जो है वो अपना अपना काम करने का तरीका होता है। श्रोतों है ना, कहने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है और सटीक तरीका ही जो है वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है। श्रोतों सो तरीके के साथ, लिहाजे के साथ अगर बात की जाए और अगर समझा जाए तरीके को, तो तरीका जो है वो एक दिन हमें अच्छे मुकाम पर ज़रूर पहुंचाता है। शो तो है ना जी, और कार्यक्रम को हम भी जो है वो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए हैं हमारे साथ वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, तो लेके चलते हैं आप सभी को इससे प्यारे से गीत की ओर। और गीत के बाद आज हम कुछ टिप्स आप पर जो है वो सेहत के लिए भी लेके आए हैं कि सेहत का ख्याल किस तरह से जो है वो रखा जाए। शो तो

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, कार्यक्रम में गीत संगीत का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेडी गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं, जानकारी को पिटारा जो है वो खोलते हैं। श्रोताओं, धर्मशाला और मैकलोडगंज के कई होटल बारूद के ढेर पर, जी बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप, दिल्ली वाला हादसा हम सभी को पता होगा। श्रोताओं, दिल्ली में जो होटल अग्निकांड हुआ है वो हम सभी को पता होगा और दिल्ली में होटल अग्निकांड के बाद जो है वो प्रशासन विभाग अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट है और बिना नेशनल बिल्डिंग कोड के नहीं मिल रही अब NOC। ज़िला में 1500 होटल गेस्ट हाउस को जो है वो नोटिस भी जा चुका है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में होटल में हुए भयंकर अग्निकांड ने देश भर के लोगों के दिल में जो है वो डर पैदा कर दिया है और दिल दहला दिया है। शो तो इतना ही नहीं, पर्यटन राज्य हिमाचल प्रदेश में भी पहुंचने वाले लाखों देश विदेश के मेहमानों को लेकर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। पर्यटन नगरी धर्मशाला मैकलोडगंज के कई होटल बारूद के ढेर पर चल रहे हैं। कई होटलों में सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। हालांकि अब नेशनल बिल्डिंग कोड NBS के तहत बिना फायर सुरक्षा NOC के होटलों की पर्यटन विभाग की ओर से जो है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, नियमों की अवहेलना करने पर होटलों की वेबसाइट भी बंद की जा रही है। ऐसे में वर्ष 2016 के बाद बने होटल यूनिट को सुरक्षा के सभी नियमों में खरा उतारने के बाद ही जो है वो NOC व रजिस्ट्रेशन हो पा रही है। हालांकि 2016 के पहले बने होटलों में बड़ा पेच फंसा हुआ था शोतो, जिसमें अब सरकार ने राहत प्रदान जो है वो करते हुए पुराने होटलों को अब अलार्म व फायर एक्सटेंशन लगाने पर ही जो है वो NOC का प्रावधान कर दिया है। धर्मशाला मैकलोडगंज में कई स्थानों पर दमकल विभाग के वाहनों के पहुंचने तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में होटलों को अपने स्तर पर ही फायर सुरक्षा को लेकर सभी इंतजाम करने के सख्त आदेश जो है वो जारी हो चुके हैं और सख्त हिदायत जो है श्रोताओं वो दी गई है, जिसमें उन्होंने वैकल्पिक स्टेयर्स यानी रास्ते से लेकर जो है वो सारी मतलब अगर रास्ता नहीं है तो उनको अपने ही लेवल पर जो है वो काम करना होगा। श्रोताओं, सभी ही वाटर टैंक, फायर हाई टैंक और पंप हाउस व अन्य व्यवस्थाएं होटल के एरिए व कमरों हाइट के हिसाब से जो है वो करना अनिवार्य किया गया है। तो बिल्कुल, पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक विनय धीवान ने बताया है कि अब नए बन रहे सभी होटलों को नेशनल बिल्डिंग कोड के नियम के तहत NOC लेना अनिवार्य है, उसके आधार पर ही रजिस्ट्रेशन की जाती है। होटल एसोसिएशन को नियमों व सुरक्षा पालन करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। श्रोतो, आप सभी बने हुए इस समय RJ सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो आप सुन रहे हैं। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को और सुनाते हैं ये प्यारा।

शोध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन की गूंज को, और आप सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। ये जी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और देखिए अच्छी सेहत जो है वो इंसान की ज़रूर होनी चाहिए, और अच्छी सेहत के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हमारा शेड्यूल कितना भी टाइट हो, अपने लिए समय ज़रूर निकालें, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम कब हमारे अंदर से जोर जो है वो कम हो गया, कब हम जो हैं वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। अच्छी सेहत के टिप्स आप तक हम पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देखिए खाने पीने की गलत आदतें, तनाव कसरत की कमी, और पूरी नींद ना मिल पाने के कारण सभी उम्र के लोगों में जो है वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। श्रोताओं, ज़रूरी बात ये है कि एक अच्छी तरह से बनाया गया डाइट प्लान ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों के लेवल को कंट्रोल में रखने में अहम भूमिका जो है वो निभा सकता है। श्रोताओं, विशेषज्ञ का मानना है कि खाने पीने की आदतों में कुछ आसान बदलाव करके आप अपनी पूरी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। दिल की बीमारियों को खतरा जो है वो कम कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को भी जो है श्रोताओं वो आप सुधार सकते हैं, सुधार में ला सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर आज के समय में लाइफस्टाइल से जुड़ी सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है श्रोताओं, और ये व्यवस्था के कारण ही स्वास्थ्य जो है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छी है हमारी, यानी कि हमें मीठी चीज़ें जो है वो खाने को हज़ारों की मिल जाएंगी। खाने पीने की गलत आदतें, तनाव कसरत की कमी और पूरी नींद ना मिल पाने के कारण सभी उम्र के लोगों में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मामले जो है वो श्रोताओं तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और तेज़ी से जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। ज़रूरी बात यह है कि एक अच्छी तरह से बनाया गया डाइट प्लान ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों के लेवल को कंट्रोल में रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञ का मानना है कि खाने पीने की आदतों में कुछ आसान बदलाव करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को भी सुधार सकते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से जो है उसमें सुधार ला सकते हैं। श्रोताओं, हम आपको एक ऐसा डाइट प्लान बताने जा रहे हैं श्रोताओं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसकी मदद से आप बीपी और ब्लड शुगर दोनों की नेचुरल कंट्रोल जो है वो आप कर सकते हैं। तो आइए ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, और 6:30 हुए हैं श्रोताओं, अब वक्त हो गया वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आपको लेके चलेंगे गीत संगीत की ओर।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोता एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं आप सभी अपने अपने रेडियो सेट पर। अंतराल के बाद आप सभी का पुनः मैं सचिन कपूर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं श्रोताओं। तो चलिए जी, इसके बाद अब आपको सीधा लेके चलेंगे हम प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही, और गीत के बाद फिर अन्य जानकारी की अपने चलेंगे।

श्रोतो FM 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो चौकी सचिन कपूर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और जैसे कि हमने आपको बताया था श्रोतों, तो देखिए पेरेंट का थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है डर रहता है मार्क्स कम होने पर। जो है वो बच्ची जो मैंने अपने कार्यक्रम में आपको अब तक ये जानकारी पहुंचाई थी, वो केवल मार्क्स कम होने के कारण जो है वो छिप गई थी कहीं, शायद इस तरह की सूत्रों के हवालों से जो है वो जानकारी हम तक पहुंच रही है। हमने जानकारी लगाई थी कि शैल्वी जो जिनकी उम्र 11 वर्ष है, कक्षा छठी में वो पढ़ती हैं, सेक्रेड हार्ट स्कूल में वो पढ़ती हैं, लगभग 9:30 बजे के आसपास जो है वो गेट के बाहर से जो है वो लापता हो गई थी, और वो कहीं छुप गई थी, कहीं छिप गई थी। कारण बताया जा रहा है कि मार्क्स कम होने के कारण जो है वो छिप गई थी। तो चलिए, इस तरह मुझे लगता है आज की पेरेंटिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी टफ है। लेकिन फ़िलहाल कार्यक्रम को इस मुद्दे पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए, बच्ची, छोटी बच्ची जो है वो मिल गई है, और मैजिक मोमो जो है फतेहपुर में श्रोताओं वहाँ पर मिली है मैजिक मोमो के पास। तो आगे चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। आज हम अच्छी सेहत के टिप्स जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और साझा कर रहे हैं। तो अपने दिन की शुरुआत जो है वो गुनगुने पानी से करें श्रोताओं, अपनी सुबह की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करें। अगर आपकी सेहत के हिसाब से ठीक हो तो आप इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें भी जो है वो मिला सकते हैं। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और पाचन में मदद मिलती है। जगाने के तुरंत बाद मीठी चाय, कॉफ़ी या पैकेट वाले फलों के जूस पीने से बचें, क्योंकि इनसे ब्लड शुगर का लेवल जो है वो अचानक श्रोतों बढ़ सकता है। और इसी के साथ कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे हम ज़रूर बढ़ते हैं श्रोतों। दोपहर 12 बजे के बाद जो है अगली जानकारी आप तक साझा करते हैं कि दोपहर 12 बजे के बाद जो है वो साच पास जाने की अनुमति नहीं है। जी बिल्कुल, तो जो भी टूरिस्ट है जो घूमना चाहते हैं साच पास, तो वो दोपहर 12 बजे के बाद नहीं आपको अनुमति मिलेगी। जनाब, हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल साच पास जाने वाले टूरिस्टों के लिए प्रशासन ने समय सीमा निर्धारित की है श्रोतों। अब दोपहर 12 बजे के बाद बैरागढ़ चेक पोस्ट से किसी भी टूरिस्ट व्हीकल को साच पास की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन का ये कदम बीते सप्ताह हुए दर्दनाक सड़क हादसे के कारण जो है वो ये फैसला लिया गया है श्रोतों। साच पास जाते वक्त बेंगलुरु से आए टूरिस्ट की कार कालावन के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी श्रोताओं। इसमें 3 बच्चों सहित 8 टूरिस्ट की मौत हो गई थी श्रोताओं। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस ने जाने पर जो है वो रोक लगा दी है। दोपहर 12 बजे के बाद साच पास जाने की अनुमति जो है वो नहीं है श्रोताओं, क्योंकि प्रशासन और पुलिस ने जो है वो इस पर रोक लगाई है जो हादसा हुआ था श्रोताओं। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा श्रोताओं यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं आपके अपने वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ। इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन की गूंज के साथ आप सभी बने हुए हैं, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। श्रोताओं फिलहाल लेके चलते हैं आपको कुछ अगली जानकारियों की ओर। हिमाचल प्रदेश में फिर से जो है वो आगामी दिनों में मौसम का बदला हुआ मिजाज जारी रहेगा। श्रोताओं मौसम विभाग के अनुसार आज भी जो है वो श्रोताओं चंबा कांगड़ा और कुल्लू ज़िला में जो है वो तेज़ हवाएं चलनी थी, जैसे चली श्रोताओं चमक होनी बिजली चमकनी थी, बारिश होनी थी, ये सारा सिस्टम जो है वो चला। और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जो है वो बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को भी राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में दिन भर जो है वो बादल छाए रहे। श्रोताओं मनाली में हल्की बूंदाबांदी हुई, लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात और कल्पा में बारिश दर्ज की गई। श्रोताओं मौसम के असर से कई शहरों के अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट जो है वो दर्ज हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है श्रोताओं कि प्रदेश में अगले 6 दिन तक मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है। 7 और 8 जून को जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है मौसम एक बार फिर से, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर जो है वो जारी रह सकता है। 11 जून को एक नया और मजबूत जो है श्रोताओं वो हो सकता है कि 11 जून को फिर से संभावना हो सकती है श्रोताओं बारिश की, जिसमें प्रदेश के अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। प्रदेश में बीते एक सप्ताह के दौरान सामान्य से 6% अधिक वर्षा जो है श्रोताओं वो दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों का मौसम सुहावना बना हुआ है, प्यारा बना हुआ है, खिलखिलाता बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है श्रोताओं। चलिए जानकारी का बिटारा यूँ ही चलता रहेगा जनाब, आप सभी सुन रहे हैं समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

0: छोटो तो आप सभी की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ज़रूर आया होगा बाहर बनकर, है ना जी। आप सभी की लाइफ में पक्का को किसी ने एंट्री जो है वो ज़रूर मारी होगी, चाहे वो आपका दोस्त हो, मुसाफिर दोस्त हो, या फिर आपका अच्छा दोस्त हो, या आपका जीवन साथी हो। छोटो आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने वीडियो सेट पर श्रीडी गुंजन धर्मशाला में। शाम के 7 बज चुके हैं श्रोताओं, और श्रीडी गुंजन धर्मशाला में अब वक्त हो गया है समाचारों का।
1: आधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं शो, तो वो है अच्छी सेहत की टिप्स जो है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको दिन की शुरुआत बता दी कि किस तरह से आप दिन की शुरुआत जो है वो आप कर सकते हैं। संतुलित नाश्ता करें। नाश्ता दिन का सबसे ज़रूरी भोजन होता है श्रोताओं, इसे छोड़ देने से बाद में आप ज़्यादा खा सकते हैं और ब्लड शुगर का लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। नाश्ते के लिए कुछ हेल्दी विकल्प हैं, मेवे और बीजों वाला ओट्स का दलिया, सब्जियों वाला पोहा, पीनट बटर वाला मल्टीग्रीन टोस्ट, मूंग दाल का चीला और सांभर के साथ इडली अपने नाश्ते में ऐड करें श्रोतो। जी बिल्कुल, अपने नाश्ते में आप पनीर, अंडा, जिस तरह की जैसी भी प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें ताकि आपको लंबे समय तक पेट आपका जो है वो भरा रहे श्रोताओं और आप अच्छा महसूस करें और ग्लूकोज का लेवल स्थिर जो है वो बना रहे। अपने आहार में जो है अपने आहार में ज़्यादा

आप अपने हर भोजन में फाइबर का भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें, है ना जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, आप सभी बने हुए हैं समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। कार्यक्रम इस वक्त है गुड इवनिंग धर्मशाला, आप सभी सुन रहे हैं अपने अपने वेडियो सेट पर और कार्यक्रम का आनंद जो है वो आप सभी ले रहे हैं। श्रोतो तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे हम भी बढ़ाते हैं, और जो चिट्टा का कारोबार कर रहे हैं जो सप्लायर है श्रोतो वो रोज़ाना गिरफ्तार भी हो रहे हैं, रोज़ाना पकड़े भी जा रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ इस जानकारी के माध्यम से शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिट्टा तस्करी के एक मामले में सफलता हासिल की गई है। श्रोतो पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए ड्रग सप्लायर नेटवर्क से जुड़े एक और मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। श्रोतो इस कार्रवाई के साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। श्रोतो पुलिस के अनुसार बात की जाए तो पुलिस थाना ढली में 13 मई 2026 को NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज अभियोग संख्या 36/2026 में सोशल सेल शिमला की टीम ने जो है वो एक वाहन में करीब 11 ग्राम चिट्टा हीरोइन बरामद किया था। इस मामले में शिमला निवासी निखिल ठाकुर और सुलभ थापा को मौके पर जो है वो गिरफ्तार किया। श्रोतो जांच के दौरान पुलिस ने मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए ड्रग सप्लाई चेन के पीछे काम करने वाले लोगों तक पहुंच बनाई। श्रोतो तकनीकी चीज़ों को लेकर जो है वो वित्तीय लेन देन की जांच के आधार पर पुलिस ने चंडीगढ़ निवासी आकाश को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। विश्लेषण और वित्तीय लेन देन की जांच के आधार पर जो है वो पुलिस ने चंडीगढ़ निवासी आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया है, अपने सिकंजे में ले लिया है। श्रोतो जांच में आकाश और निखिल ठाकुर के बीच पैसों के लेन देन के प्रमाण मिले, जिससे नशा तस्करी नेटवर्क के बारे में जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। मामले की गहन जाँच जारी रखते हुए पुलिस ने अब चंडीगढ़ के फैन एक राम दरबार एरिया निवासी 28 वर्ष बोबी को गिरफ्तार किया है। श्रोतम पुलिस के अनुसार बोबी इस नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण सप्लायर था। तो इसी तरह से ये सप्लायर जितने भी है श्रोतो अंदर जाएंगे इसी तरह से जो है वो इनका भांडा फूटेगा, है ना। और हम सभी भी यही चाहते हैं कि इसी तरह से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती रहें और इसी तरह से जो है इन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो होती रहे, क्योंकि नशा जो है वो हमारे यूथ को ख़त्म कर रहा है। श्रोतो नशा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, हमारी नस्ल को कमज़ोर जो है वो कर रहा है। श्रोतो और हर देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो यूथ होता है, और यूथ अगर हमारा सूखे नशे के चपेट में आ जाता है, सूखे नशे की सिकंजे में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बर्बादी तो हमारी सबकी ज़रूर है। श्रोतो तो चलिए फिर ये गीत मेरा बहुत पसंदीदा गीत है इसलिए मैंने स्पेशल रखा है। होप सो आपको भी पसंद ज़रूर आएगा। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन की गूंज के साथ आप सभी बने हुए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने सुना आपके अपने वीडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में। कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं और लेके चलेंगे, क्योंकि आज हम बातचीत कर रहे हैं अपनी सेहत पर। भाई साहब सेहत है तो सब कुछ है ना। चलिए अगली जानकारी आप तक साझा करते हैं श्रोताओं। सही फलों का चुनाव करें, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, बेहतरीन रखने के लिए, खुद को स्वास्थ्य रखने के लिए और बीमारियों से दूर रहने के लिए जो है वो सही फलों का चुनाव करें। फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ फलों में प्राकृतिक शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिन लोगों का ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है श्रोतों, जिन भी लोगों का जो है वो ब्लड शुगर अगर ज़्यादा रहता है उन्हें फलों का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। फलों के कुछ बेहतरीन विकल्प हैं सेब, नाशपाती, अमरूद, पपीता, संतरे और इस प्रकार के जितने भी फल हैं। फलों के जूस का ज़्यादा सेवन करने से बचे श्रोतों, क्योंकि इनमें अक्सर फाइबर नहीं होता और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है श्रोतों। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, आप इन फलों का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, बेहतरीन विकल्प हैं ये सेब, नाशपाती, अमरूद, पपीता, संतरे। नमक का सेवन कम करें श्रोतों, शरीर में सोडियम की ज़्यादा मात्रा हाई ब्लड प्रेशर के मुख्य कारणों में से एक है श्रोतों। ब्लड प्रेशर

बचे और बच्चों को भी ना आदेश हो तो, है ना। जो पैकेट वाले होते हैं चीज़ें जो होती हैं उनसे बचें, अचार और पापड़ का सेवन कम करें शोतो। स्वाद बढ़ाने के लिए जो है वो अतिरिक्त नमक के बजाय जड़ी बूटियां और मसालों का इस्तेमाल करें। विशेषज्ञ की सलाह लें कि अपने दैनिक आहार में आप नमक का सेवन कम करें शोतो, है ना। और विशेषज्ञ की सलाह है ये कि अपने दैनिक आहार में जो है वो नमक का सेवन कम ही रखें। हेल्दी फैट चुने शोधों, सभी फैट नुकसानदायक नहीं होते हैं। हेल्दी फैट दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और सूजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं शोधों। बादाम, अखरोट, पिस्ता, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप ज़रूर खाएं शोतो, है ना जी। ज़रूर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को जो है वो ज़रूर ऐड करें शोतो। तले हुए खाने से परहेज करें शोतो, है ना जी। तो ये कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं। हाँ, वक्त हुआ है विड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं आप सभी से अंतराल के बाद।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला,

0: अच्छा जी, सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं।
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे,

श्रोता एफ एम 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। तो आइए जी, अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो लेकर चलते हैं आप सभी को, इन बातों का खास ख्याल रखें। आज की आपकी सेहत के टिप्स के बारे में हमने, अपनी सेहत के टिप्स के बारे में जो है वो जाना है श्रोतों। तो इन बातों का खास ख्याल रखें, सिर्फ डाइट ही काफ़ी नहीं है, हेल्दी खाने के साथ साथ इन चीज़ों का भी को भी जो है वो शामिल ज़रूर करें। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की कसरत करें, वॉक करें, रनिंग करें, पूरी नींद लें, योगा करें, मेडिटेशन करें, श्रोतों है ना, तनाव से बचें, बीपी और ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग जो है वो करें, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। फाइबर अच्छा खाना खाएं, सब्जियों भरा हरा खाना जो है वो ज़रूर खाएं श्रोतों है ना। रोज़ाना किए गए छोटे छोटे बदलाव आगे आने वाली दिक्कतों से आपको बचा सकते हैं और मदद कर सकते हैं, लंबे समय तक अच्छी सेहत बनाए रखने में जो है वो बिल्कुल सहायक होते हैं। तो कार्यक्रम में आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं, कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

91.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी बने हुए इस समय वीडी गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूँ आपके साथ। आप सभी बखूबी जानते हैं इस आवाज़ को, आपका अपना आरजे सचिन कपूर। तो श्रोताओं, अब वक्त हो गया है वीडी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक

0: समाचारों का।
1: में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के दूर अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को दी मंजूरी। अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति मामलों पर पुनर्विचार पर भी लगाई मुहर। हिम केयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज बीमा मॉडल के अंतर्गत संचालित करेगी सरकार। नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री धर्मशाला में दिलाएंगे शपथ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री बौखलाहट में जनादेश का लगातार कर रहे हैं अपना अपमान। और सांसद अनुराग ठाकुर ने अम्ब अंदौरा से कोलकाता के लिए साप्ताहिक गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग कारणों से अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति के मामले पर पुनर्विचार के मामले को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में सरकारी भूमि पर कुछ अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि ये नीति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है।
1: हिमाचल प्रदेश में आप जो सरकारी भूमि पे या पड़ोस भूमि पे जिनके अवैध कब्जे थे, वो पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज बना करके कैबिनेट में आई। उसमें ये है कि जिनके पास 20 बीघे से कम इंक्रोचमेंट सरकारी लैंड है या रेवेन्यू की लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है, उनके लिए पॉलिसी बना करके हिमाचल प्रदेश की सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल बना के भेजा है।
0: हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हिमकेयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बीमा मॉडल के तहत संचालित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अब 5 लाख के स्थान पर 7 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
1: कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब हिमाचल सरकार जो है इंश्योरेंस वाली जो न्यू स्कीम है, इंश्योरेंस के माध्यम से न्यू स्कीम जो है वो लॉन्च करने जा रही है और इसकी मोडालिटीज के लिए भी जो है डिपार्टमेंट को जो है इंस्ट्रक्शन आज कैबिनेट में जो है दी है। हाँ, मतलब हिमकेयर कंटिन्यू रहेगा, हिमकेयर और आयुष्मान कंटिन्यू रहेगा और जो इलाज होगा वो इंश्योरेंस के माध्यम से होगा।
0: संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर शपथ दिलाई जाएगी।
1: आज कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि जो पंचायत के प्रधान और उप प्रधान की ओथ जिला स्तर पर दिलाई जाएगी और 15 जून को दिलाई जाएगी और मुख्यमंत्री जी कांगड़ा जिले में धर्मशाला में जो ओथ दिलाएंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिनिस्टर्स को डिप्यूट किया गया ओथ दिलाने।
0: मंत्रिमंडल की बैठक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति को मंजूरी देने के अलावा जॉब ट्रेनीज को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के सैकड़ों पद भरने को भी स्वीकृति दी गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हार की बौखलाहट में हैं, इसलिए जनादेश का लगातार अपमान कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, ये बात मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में परिजनों की उपस्थिति एक सम्मान का भाव है, लेकिन आज सरकार द्वारा ऐसे समारोह में परिजनों और मीडिया को जाने से रोकना भी बौखलाहट का एक उदाहरण है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को अनुशासन और संवाद का संदेश दिया है। आज शिमला में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष नीरज भारती द्वारा अपनी ही सरकार पर लगाए गए आरोपों और पद से इस्तीफे को लेकर उपजे विवाद पर ये बात कही। चंद्र कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन बिना तथ्यों व पर्याप्त विचार विमर्श के लगाए गए आरोप संगठन व सरकार दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं।
2: जो कल स्टेटमेंट नीरज भारती ने दी है उस स्टेटमेंट से ठीक मैसेज जो है वो नहीं है, क्योंकि राजनीति में कोई छोटा काम नहीं हुआ वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार के एलिगेशन लगाना हमारी पार्टी की जो सरकार है उसके ऊपर अटैक की बात, हम इसको डिसअप्रूव करते हैं। तो मैं उसको भी ये राय दूंगा कि इस प्रकार के एलिगेशन और बजाय तथ्य को बिना सोचे समझे कोई बात करना, ये पार्टी संगठन और पार्टी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है। जो कुछ उसका ध्यान इस चीज के ऊपर है उसका मैं खंडन करता हूँ।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए साप्ताहिक गुरुमुखी सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ी करीब 1900 किलोमीटर की दूरी 31 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। अनुराग ठाकुर ने इस रेल सेवा को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये रेल सेवा पटना साहिब और वाराणसी जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
3: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अंब इंदौरा से कलकत्ता को जोड़ने का काम किया। ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुरुमुखी एक्सप्रेस जो लगभग 1900 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी और मात्र 31 से 32 घंटे के अंदर ये हिमाचल प्रदेश को कलकत्ता से जोड़ने का काम, एक के बाद भी नई ट्रेन और हिमाचल को देश के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
0: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत 100 युवा प्रतिभागियों के दल को इन दिनों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों के सीमावर्ती गांवों का दौरा करवाया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे इन प्रतिभागियों को 3 से 5 जून तक किन्नौर जिला के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय समुदायों के जीवन को नजदीक से समझने का अवसर मिला। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
4: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत आज 100 युवा प्रतिभागियों को किन्नौर और लाहौल स्पीति के सीमावर्ती गांव के लिए रवाना किया गया। ITBP बेस कैंप रेखांगपियो में 3 दिवसीय अनुकूलन एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को 5 बसों के माध्यम से 20 सीमावर्ती गांव में भेजा गया। बसों को उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, ITBP कमांडेंट सुनील कुमार तथा सहायक आयुक्त विपिन ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए युवा आगामी 7 दिनों तक सीमावर्ती गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, आजीविका और सामाजिक जीवन को नजदीक से जानेंगे। इस दौरान वे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जन जागरूकता अभियानों और सामुदायिक सेवा गतिविधियों की जवान तैनात किए गए हैं। आकाशवाणी के लिए मैं किन्नौर से सुमेश नेगी।
0: नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत के प्रधान प्रशांत के लाहौल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
5: लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्तर विकास राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आज पंचायत के प्रधान प्रशांत के लाहौल पहुंचने पर अटल टनल के उत्तरी द्वार पर ग्रामीणों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें पारंपरिक कथा पहनाकर सम्मानित किया गया। पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खुशी में ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर थिरकते हुए जश्न मनाया। इसके बाद शांशा गांव पहुंचने पर सभी ग्रामीणों ने पुनः लाहौली परंपरा के अनुसार स्वागत किया। शांशा पंचायत की सफलता ने लाहौल स्पीति और हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शिमला के बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें सभी वार्डों के सदस्य शामिल रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को दी मंजूरी। अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति मामलों पर पुनर्विचार पर भी लगाई मुहर। हिम केयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज बीमा मॉडल के अंतर्गत संचालित करेगी सरकार। नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री धर्मशाला में दिलाएंगे शपथ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री बौखलाहट में जनादेश का लगातार कर रहे हैं अपमान। और सांसद अनुराग ठाकुर ने अंब अंदौरा से कोलकाता के लिए साप्ताहिक गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
6: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी चौकी सचिन कपूर। आइए तो कार्यक्रम से अब हम भी ले लेते हैं अलविदा श्रोताओं, और जाते जाते आपको यही कहेंगे, माँ बाप की सेवा करते रहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, प्लास्टिक कम कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो फिर रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे,

या उसको दूँ।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।